नमस्कार, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:54 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की ये प्रातःकालीन प्रसारण सभा इस मंगल धुन के साथ आरंभ होती है।

FM 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 8:57 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

थोड़ी ही देर बाद सुबह 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर होगा रामचरितमानस गान। 9:20 से आप सुन पाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। नौ बजकर 40 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप दंत रोग कारण बचाव व उपचार विषय पर दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हापुराम से अशोक कुमार गोयल की बातचीत सुनेंगे। सुबह 10 बजे गाने पुराने जमाने के, 10:30 बजे आप सुनेंगे गाने नए तराने नए, 11 बजे आप सुनेंगे निकाय चुनावों की तैयारी पर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम।

12 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। दिन में 1 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 1:05 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। शाम 5 बजे होगा युववाणी कार्यक्रम। 5:30 बजे आप सुनेंगे महिला जगत।

6:05 होगा फिल्म संगीत, 6:20 आप सुनेंगे माटी के स्वर कार्यक्रम और शाम 7 बजे आप सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम। 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्मी गजलें कव्वालियाँ। 8:30 बजे आप सुनेंगे गाने नए जमाने के। 9 बजे से आप सुनेंगे सुगम संगीत। ये थे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज रहे हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आज नगर निकाय आम चुनाव में घोषित प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, आज 19 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगर निकाय आम चुनाव में कल नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार शेष प्रक्रिया के तहत आज चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह की अध्यक्षता में कल पर्यवेक्षकों की प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव में पर्यवेक्षण कार्य भी दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का पर्यवेक्षण 7 से 14 सितंबर तक रहेगा, जो सदस्य पद की मतगणना पूरी होने तक जारी रहेगा। वहीं दूसरे चरण का पर्यवेक्षण 21 से 22 सितंबर तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक किया जाएगा। बैठक में श्री सिंह ने अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह सजग और सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यवेक्षकों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले कार्यों, दायित्वों और संबंधित नियमों की प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनाइज कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी। इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। राजस्थान पुलिस ने तकनीकी नवाचार के तहत राजकोप सिटीजन मोबाइल ऐप पर ई विजिटर सुविधा की शुरुआत की है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की ओर से शुरू की गई इस सुविधा से होटल, धर्मशाला और व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जा रहे अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले आगंतुकों का विवरण अब मोबाइल फोन से ही दर्ज किया जा सकेगा। इससे खासतौर पर छोटे होटल और धर्मशाला संचालकों को राहत मिलेगी। नशा मुक्त भारत अभियान की छठी वर्षगांठ के मौके पर इस महीने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस शपथ अभियान में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से 10 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को शामिल किया जाएगा। मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर संदीप रेवजी राठौड़ ने कल नई दिल्ली में इस योजना पर चर्चा करने के लिए दो उच्च स्तरीय समन्वय बैठकें की। उन्होंने बताया कि यह शपथ अभियान एक ऐसी पहल है जिसके तहत लोग स्वेच्छा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के शिकार लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं। इसका मकसद लोगों में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देना और उनमें नशीले पदार्थों से दूर रहने की जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षक दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को याद करने का अवसर है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस साल कुल 82 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 48 स्कूल शिक्षक शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने वाले शिक्षकों को हर साल प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश से भी 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिलेगा। चाकसू के टूमली का बास के उच्च प्राथमिक विद्यालय की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को नवाचार, तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं झालावाड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के डॉक्टर देवेंदु सेन को ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रशिक्षित करने के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व जन्माष्टमी पर आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजन किए जा रहे हैं।

0: मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। घरों और मंदिरों में श्री कृष्ण की विशेष झांकी भी सजाई जा रही है। भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां मंगला आरती के पहले से ही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारे गूंज रहे हैं।
1: ब्रज क्षेत्र भरतपुर में आज कृष्ण जन्माष्टमी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। किला स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की और राधे राधे जय श्री कृष्णा के जयकारे गुंजायमान हो रहे हैं। ठाकुर जी का माखन मिश्री से भोग लगाया जा रहा है। बिहारी जी मंदिर को आकर्षक रोशनी व फूलों से सजाया गया है। ठाकुर जी को विशेष पोशाक धारण कराकर अलौकिक श्रृंगार किया गया है। शहर की नदिया गोपाल मंदिर राधा रमन मंदिर में आज दोपहर को नंदलाल का जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं श्रद्धालु निकटवर्ती गोवर्धन धाम पहुंचकर गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा करने पहुंच रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: इधर राजधानी जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित सभी मंदिरों में नंदलाल के आगमन की तैयारियां हो रही हैं। यातायात के सुगम संचालन के लिए परकोटा क्षेत्र में चलने वाले परिवहन साधन ई रिक्शा, ऑटो, सिटी और मिनी बसों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसे देखते हुए जयपुर मेट्रो प्रशासन ने मेट्रो के फेरों की संख्या बढ़ाकर 218 कर दी है। अंतिम मेट्रो ट्रेन का संचालन मानसरोवर से रात 1 बजे और बड़ी चौपड़ से रात 1:10 तक किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को नई दिशा देती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज पुंछरी के लौटा पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। उन्होंने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्काम कर्म करने, अन्याय का प्रतिकार करने तथा लोक कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का भगवान श्री कृष्ण का संदेश हर युग में प्रासंगिक है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को आत्मसात कर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के निर्माण में योगदान दें। और अब मौसम। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। धौलपुर से तेज बारिश के समाचार हैं। सवाई माधोपुर और कोटपुतली बहरोड में भी कल देर रात से ही रुक रुक कर हल्की बरसात

0: का दौर बना हुआ है। इससे पहले कल 7 शहरों में 1 इंच से ज्यादा बरसात हुई। सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर के उज्जैन में 54 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चित्तौड़गढ़, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में भी बरसात हुई। डीग, कामा, नगर, धौलपुर और करौली सहित कुछ अन्य शहरों में 1 या 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर पूर्वी राजस्थान में आगामी 4 दिन तक जारी रह सकता है। विभाग ने आज 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
1: अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज 5 और 6 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। विशेष रूप से कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं पे तेज और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में अभी भी अगले 1 सप्ताह के दौरान कमजोर मानसून परिस्थितियां रहेंगी। वहीं बीकानेर संभाग के कुछ जिलों में और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी अगले 3-4 दिन हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज नगर निकाय आम चुनाव में घोषित प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, आज 19 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

FM 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस कांड।

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। समय हो चला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। श्रोताओं, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुरली की धुन पर झूमे सारा संसार, नंद लाला करें सबके जीवन में खुशियों की बौछार। माखन की मिठास और कान्हा का प्यार, जन्माष्टमी लाए आपके जीवन में खुशियों का अपार बहार। तो शुरू करते हैं नंदलाला के जन्मोत्सव से ही आज की ये पहली भक्ति रचना।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रेम का पूर्ण प्रतीक श्री कृष्ण, जिनका आज है जन्मदिवस, याद करते हैं उनको जगत के गुरु के रूप में। वसुदेवम सुतम देवम कंच चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

श्रोता हूँ, आज के इस पावन दिन की एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हमारे सबके जीवन में आनंद ही आनंद भरे, इसी शुभकामना के साथ अगला भक्ति गीत आपके लिए।

जय हो कन्हैया लाल की। इस भक्ति गीत के साथ हमारा आज का ये वंदना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। सुबह के 9:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप दंत रोग कारण बचाव व उपचार विषय पर दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हापूराम से अशोक कुमार गोयल की बातचीत सुनेंगे।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हापूराम चौधरी, जो कि न केवल एक दंत चिकित्सक हैं बल्कि अपना इनका स्वयं का चिकित्सालय यहाँ संचालित हो रहा है महादेव हॉस्पिटल के नाम से, और साथ में आप विभिन्न सामाजिक सरोकारों से और समाज सेवा से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और नागौर की जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे एक दंत चिकित्सक के रूप में। तो डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। अगर हम दांतों की बात करते हैं, तो एक समय था जब लोग दांतों को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे और जो दांतों से संबंधित कोई समस्या होती थी तो उसको इग्नोर करते थे या उसको टालते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि अधिकांश लोग जो है दांतों की समस्या से, किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं, और वो चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, वो किसी न किसी दंत समस्या से जुड़े हुए हैं। और दांत का महत्व तो तब पता लगता है जब एक दांत में थोड़ा सा, अगर हल्का सा दर्द भी होता है, तो फिर आदमी को भाग के और चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए दांतों को हल्के में लेना वो ठीक नहीं है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि दांतों को, जो भी दांत संबंधी कोई समस्या हो, तो उसको आप गंभीरता से लें और चिकित्सक से संपर्क करें। अब डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं हमें जानना चाहूँगा कि किस प्रकार की दंत समस्याएँ हैं जो कि आम है, बहुत कॉमन है, जिसके पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं।
2: जी, अपने शास्त्रों में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, जिसमें मैं एक और जोड़ देता हूँ कि जिसमें मुख स्वास्थ्य का दर्पण है। कोई भी प्रॉब्लम होती है सिस्टमिक, तो डॉक्टर साहब अपने को यही कहते हैं कि पहले आपकी जीभ दिखाओ, तो ओरल कैविटी या पूरा मुख, तो मैं इसको दंत एवं मुख स्वास्थ्य समस्या कहूँगा।
1: जी,
2: और जो आपने पहले बताया कि पहले लोग इस पर ध्यान नहीं देते थे, तो किसी भी चिकित्सा सेवा को लेके एक जागरूकता का क्रम होता है। तो समाज पहले जागरूक नहीं था, जैसे जैसे आर्थिक सामाजिक स्तर लोगों का बढ़ा है, उसी के हिसाब से दंत एवं मुख संबंधी स्वास्थ्य को लेकर भी लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, और इस मतलब अभी बहुत अवेयरनेस आ रही है लोगों में।
1: जी, लेकिन किस तरह के पेशेंट, अभी आप क्या समझते हैं कि दांतों की कौन सी समस्या है जो कि बहुत ज़्यादा जो लोगों को प्रभावित कर रही है?
2: दांतों में अपन आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो एक तो डेंटल केरीज और दूसरा जो अपन पायरिया बोलते हैं,
1: जी,
2: ये बहुत कॉमन समस्या है। तो डेंटल केरीज और पायरिया दोनों ही अपन जब मुंह को या दांतों को साफ नहीं करते समय से, तो उसके कारण ये होती है।
1: जी,
2: एक हमारे मेडिकल साइंस में टर्म आता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: जी,
2: बचाव ही उपचार है।
1: जी,
2: तो मेरा ये मानना है, मैं आपके समाधान भी बता देता हूँ कि हर एक, जैसे बच्चे के दांत उगते हैं और बुढ़ापे में जब दांत गिरते हैं, चाहे मुंह में एक भी दांत रहे, तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों टाइम दांतों को साफ करना चाहिए। वो चाहे ब्रश से करें, चाहे अंगुली से करें, दोनों समय।
1: अच्छा।
2: सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले।
1: तो ये तो मतलब दांतों की देखभाल हम करेंगे तब हम बीमारियों से थोड़े बच सकेंगे, जैसे आपने बताया कि बचाव उपचार है, तो बचाव तो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा विस्तार से कि किस प्रकार की जीवन शैली हमारी हो। एक तो आपने बताया कि सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है।
2: जी।
1: तो ये मैं जानना चाहूँगा कि जो लोगों को सफाई भी किस तरह से हो, ब्रशिंग भी प्रॉपर हो।

0: ब्रश करने का तरीका क्या हो, पेस्ट वगैरह जो हो किस तरह की हो, किस तरह के मंजन होना चाहिए और कितनी देर करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी बातें हैं। वरना कई बार जो ब्रश को अगर गलत तरीके से करते हैं तो उससे भी लोगों को समस्या होती है।
1: टूथब्रश की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, उस पर मैं यहाँ अभी नहीं बता पाऊँगा,
0: जी
1: वो तो हर एक मरीज को अपने दंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन पेस्ट कोई भी हो, पेस्ट के कोई ब्रांड का कोई वैल्यू नहीं है,
0: जी
1: कोई भी पेस्ट हो उससे ब्रश करना चाहिए दोनों टाइम, बस दोनों टाइम साफ करना चाहिए
0: जी रात को सोने से पहले जरूर ब्रश
1: जी।
0: करना।
1: और खाने के 1 घंटे बाद, कम से कम 1 घंटे का ड्यूरेशन हो, नहीं तो क्या है, मुंह का माध्यम है वो एसिडिक, अम्लीयता बढ़ जाती है। अगर
0: जी
1: उसी समय अगर ब्रश किया जाए तो पेस्ट में भी अम्लीयता होती है, एसिडिक मीडियम होता है पेस्ट का भी,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उससे एसिडिटी बढ़ जाती है और दांतों का क्षरण होता है
0: जी
1: जो कि डबल नुकसान दे सकता है। तो
0: जी
1: भोजन के बाद, शाम के, रात के भोजन के बाद
0: जी
1: 1 घंटे बाद कम से कम ब्रश करना चाहिए,
0: जी
1: या सोने से आधे घंटे पहले ब्रश करना
0: जी
1: चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आजकल जो है दांतों में केविटी ये बड़ी कॉमन है, बहुत जो लोग हैं वो दांतों की केविटी को लेकर आपके पास आते होंगे चिकित्सा उपचार के लिए, तो ये जानना चाहेंगे केविटी के लिए क्या क्या उपचार हैं। एक आरसीटी भी जो है इसमें काफ़ी आजकल प्रचलन में है, आरसीटी में भी कोई नए इनोवेशन हुए हों, कोई नई तकनीकें आई हों, क्योंकि पहले तो एक समय था जब आरसीटी 5-7 सिटिंग में हुआ करती थी, उसमें क्या कुछ बदलाव आए और यहाँ अपने नागौर में क्या सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध है।
1: अभी केविटी के, उसको बरन रेस्टोरेशन बोलते हैं, इंग्लिश
0: जी
1: टर्मिनोलॉजी ये है कि रेस्टोरेशन,
0: जी
1: और अपन एकदम देसी भाषा में या गांव की भाषा में या अपन
0: जी
1: लोकल लैंग्वेज में कहें तो दांत को भरना, मसाला भरना, ये
0: जी
1: टेक्निक्स होती है। रूट केनाल ट्रीटमेंट
0: ट्रीटमेंट
1: तब करवाना चाहिए जब दांत के इनेमल से आगे डेंटिन भी खराब हो जाए और डेंटिन के साथ पल्प इन्वॉल्व हो जाए।
0: जी
1: दांत की स्ट्रक्चर में 3 महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स होती है एक दांत में,
0: जी
1: सबसे ऊपर होता है ये इनेमल,
0: इनामेल, हाँ तो
1: जो
0: तीसरे स्तर पर पहुंच जाए
1: जब
0: वो
1: इनेमल जब
0: इन्फेक्शन,
1: खराब होता है
0: जी
1: तब अपन उसमें भरवा सकते हैं, मसाला भरवा
0: फिलिंग करवा
1: सकते हैं,
0: सकते हैं। जी
1: फिलिंग करवा सकते हैं, रेस्टोरेशन करवा सकते
0: जी
1: हैं। और डेंटिन भी जब खराब होता है उसका भी डेंटिन रिपेयर भी होता है।
0: अच्छा
1: तीसरा जब आता है पल्प, जब पल्प का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसको पल्पाइटिस बोलते हैं,
0: जी
1: और पल्पाइटिस भी 2 प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल।
0: जी
1: तो दोनों ही कंडीशन में रूट केनाल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। रूट केनाल ट्रीटमेंट में पहले 4-5 सीटिंग का प्रोविजन था, अब सिंगल सीटिंग भी होती है,
0: जी
1: लेकिन वो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन पर डिपेंड करता है। कई बार पेरिपेकल एब्सेस हो या सिवियरिटी ज़्यादा हो इन्फेक्शन की तो सिंगल सीटिंग उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो बहुत से कारण होते हैं, वो डेंटिस्ट को ही तय करने देना चाहिए,
0: जी
1: अपनी तरफ से आग्रह या दुराग्रह नहीं करना चाहिए।
0: जी
1: और
0: जी
1: मेरा एक निवेदन है सभी श्रोताओं से, सुधी श्रोताओं
0: जी
1: से, कि गूगल करके नहीं जाएं डेंटिस्ट के पास, या सुनी सुनाई बातों पर, सोशल टाबूज पर, इन पर नहीं जाएं कि दांत ऊपर, दांत
0: जी
1: निकालने पर आंख चली जाती है,
0: जी
1: दांत की सफाई करना से दांत हिलने लग जाते हैं, उन
0: जी
1: चीजों पर नहीं जाएं।
0: जी
1: ऑथेंटिक जो डेंटिस्ट हो, जो
0: जी
1: क्वालिफाइड डेंटिस्ट हो, जो डिग्रीधारी डेंटिस्ट हो। एक समस्या है गोयल साहब, अभी समाज में या बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में
0: जी
1: झोला छाप डॉक्टरों की भी भरमार है, और दूसरा जो क्वालिटेटिव डेंटिस्ट नहीं है, जो डिग्री
0: डिग्री भी
1: रेगुलर
0: और
1: नहीं करते, कई बार
0: जी
1: अब सिस्टम की खामियां हैं, अब ज्यादा अपन
0: जी
1: बात नहीं
0: जी
1: करेंगे इन पे,
0: जी
1: कई
0: जी
1: लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये भी एक सिस्टम की खामी है। तो ये सरकार का काम है जो भी है,
0: जी
1: लेकिन अपने को अपने डेंटिस्ट की प्रमाणिकता वो
0: जी
1: सब कुछ तय करते हुए,
0: देखकर,
1: बिना
0: हाँ
1: गूगल ज्ञान लिए हुए, बिना सुने कहे
0: जी
1: डेंटिस्ट की बात पर ही भरोसा करना चाहिए अपने को
0: जी
1: जी।
0: जैसा कि आपने भी बताया कि एक और समस्या दांतों की जो बहुत आम होती है वो है पायरिया, तो ये पायरिया के क्या कारण होते हैं, किस वजह से ये पायरिया होता है और किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है कि आप इस समस्या से रूबरू ना हो।
1: डेंटिस्ट्री में इसको, पायरिया को टर्मिनोलॉजी में, जो मेडिकल साइंस की भाषा है, उसमें
0: जी
1: जिंजिवाइटिस और पेरिडोन्टाइटिस बोलते हैं।
0: जी
1: तो जिंजिवाइटिस का मतलब है मसूड़ों का सूजना, तो पायरिया की शुरुआत होती है मसूड़ों के इन्फेक्शन से। मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर दांत और मसूड़े के बीच में मेल जमने लग जाता है,
0: जी
1: वो फिर मसूड़े को तो इन्फेक्ट करता ही है, मसूड़े की सूजन पैदा करता है, इसके साथ साथ दांत और मसूड़े में गैप पैदा करता है। तो कालांतर में वही चीज फिर जिंजिवाइटिस पेरिओडोन्टाइटिस में बदल जाता है,
0: जी
1: उसमें फिर दांत हिलते हुए दांत गिर भी जाते हैं कई बार
0: जी जी तो मतलब वो कोई सी भी हो दंत समस्या, उसको हम गंभीरता से लें और
1: जी
0: उसको उपचार समय से अगर शुरू कर देंगे
1: जी
0: तो वो जल्दी वो हम उस ठीक हो जाएंगे
1: जी
0: और उस समस्या से बाहर निकल

0: तो हम जो है दांत बढ़िया साफ रहेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
1: अपने को सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना चाहिए
0: जी,
1: और 2-3 महीने बाद में अपने को टूथब्रश को फेंक देना चाहिए
0: जी।
1: कई लोग बहुत दबाव देके ब्रश करते हैं, उससे नहीं तो दांत सफेद होते हैं, न दांत साफ होते हैं
0: जी।
1: एक ब्रश की टेक्निक्स होती है, मैंने आपको पहले भी बताया 7-8 प्रकार की टूथब्रश टेक्निक होती है, वो डेंटिस्ट ही ढंग से बता सकते हैं, लेकिन बहुत जेंटली प्रेस करना चाहिए
0: जी,
1: जिसमें जो अपने कण फंसे हुए हों वो निकल जाए।
0: और एक जो ब्रशिंग करते हैं वो हम पर्टिकुलर कुछ एक दो आगे के दांतों को ही करके रह जाते हैं, पीछे ऊपर के सब दांतों की ब्रशिंग होनी चाहिए?
1: बिल्कुल, हर दांत की पूरा उसका चारों ओर से साफ करना चाहिए
0: जी, मतलब जो भी ऊपर के दांत हैं, दाढ़े हैं, सबको आपको
1: हॉरिजॉन्टल वर्टिकल
0: जी
1: सारे डायमेंशन में अपने को ब्रश को घुमाना चाहिए दांतों पर
0: जी। एक दांतों की बारे में ये भी है कि बिल्कुल ठंडा पीने के बाद गर्म नहीं पीना चाहिए, गर्म के बाद ठंडा तो बिल्कुल नहीं पीना, उसमें कुछ समय देना चाहिए, जैसे आइसक्रीम खा के आप चाय पी लो तो वो कितने नुकसानदायक होती है इस तरह की चीज़?
1: देखो ये तो मैं आयुर्वेद पे जाऊंगा, इसमें शरीर की जो वात पित्त की प्रकृति होती है
0: जी
1: ये ठंडा गर्म का संबंध उससे है
0: जी,
1: दांत की समस्या से उसका कोई लेना देना नहीं है।
0: जी
1: अगर दांत अपने सेंसिटिव हैं तो अपन ठंडा खाते ही गर्म खाएंगे तो उसमें थोड़ा पल्पाइटिस सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी में बदल सकती है
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो दर्द पैदा कर सकती है।
0: जी
1: बाकी ठंडा और गर्म पे वो तो एक जीवन शैली का निश्चित रूप से वो नुकसान होता ही है,
0: जी
1: जैसे आयुर्वेद वाले ज्यादा जानते हैं आयुर्वेदाचार्य, ये वो प्रतिहार हो जाता है उसके,
0: जी
1: ठंडे के ऊपर गर्म खाना ये प्रतिहार है।
0: जी
1: तो मैं मुख्य फोकस मेरा ये रहता है कि अपने को जीवन शैली में अपना सुधार करना चाहिए बस, क्योंकि आजकल खान पान की लोगों की स्टाइल समय सब बदल गया है। पहले आदमी 2 या 3 बार से ज्यादा भोजन नहीं करता था, सुबह का कलेवा हो गया या ब्रेकफास्ट कहते हैं अपन, दोपहर का लंच हो गया, गांव में दोपहर ही हो गई, और शाम का ब्याड़ू हो गया या डिनर हो गया।
0: जी
1: और इसमें मैं जेनिज्म पे जाना चाहूंगा कि 5 बजे से पहले अगर भोजन हो जाए और उसके बाद कुछ नहीं खाएं तो बहुत अच्छा रहता है
0: जी, बिल्कुल सही बात
1: और
0: है।
1: पानी ज्यादा पीना चाहिए, ये भी मैं आपको साथ में एड ऑन करना चाहूंगा
0: जी, तो हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है उससे हमारे श्रोताओं को बहुत लाभ मिलेगा, और वो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि डूज एंड डोंट्स जो हैं हर जगह होते हैं, हर चीज़ जीवन में, तो उनका वो ध्यान रखें कि क्या हमें करना है। यही चीज़ दांतों के ऊपर भी लागू होती है, आँखों पर भी लागू होती है, शरीर के दूसरे अंगों पर भी लागू होती है, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। तो हमें ये ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नियमों का पालन करें और दोनों समय ब्रश करें ढंग से, और अपने दांतों की देखभाल ठीक तरह से करेंगे तो हम दंत समस्याओं से बच सकेंगे और डॉक्टर साहब को कम परेशानी उठानी पड़े। आपने डॉक्टर साहब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए, इसके अंतर्गत दंत रोग कारण बचाव और उपचार विषय पर दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हाफू राम से अशोक कुमार गोयल की बातचीत आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी गजलें, जिसमें सबसे पहले आपको सुना रहे हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।
3: एक ताज़ा गज़ल पेश खिदमत है, यह गज़ल आपको ज़रा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

अभी आपने पंकज उदास की आवाज़ में ये गज़ल सुनी। हम आकाशवाणी नागौर के जिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर दिन के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के इस दो गाने के साथ, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

0: रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
1: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गाने पुराने जमाने के इस कार्यक्रम में अगला गीत आपके लिए आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को और आप सुन रहे हैं गाने पुराने जमाने के। अगला गीत आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम शागिर्द।

गाने पुराने जमाने के इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत आपके लिए है फिल्म बैजू भावरा से। मोहम्मद रफी की आवाज में इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से सजाया नौशाद ने।

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में फिल्म राजा और रंक के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गाने पुराने ज़माने के यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए गाने नए तराने नए। इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म ओ माय गॉड से, जिसमें आवाजें हैं मीका सिंह और श्रेया घोषाल की।

आप सुन रहे हैं गाने नहीं तराने नहीं। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम आपको नए और पुराने गीत सुना रहे हैं। तो अब नए गीतों के इस दौर को आगे बढ़ाते हैं और इसलिए चलते हैं आपको फिल्म प्रेम रतन धन पायो के इस गीत में, जिसको गाया है अमन त्रिखा और विनीत सिंह ने।

गाने नए तराने नए का अगला गीत आपके लिए फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से श्रेया घोषाल, उदित नारायण, विशाल शेखर की आवाज़ में।

गाने नए तराने नए, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम है कृष्णा और कंश।

0: कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वास्तव द रियलिटी से ही ये अगला सॉन्ग, जिसमें आवाजें हैं विनोद राठौड़ और अतुल काले की।
1: अरे टोली बना के निकले ग्वाले,

इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गाने नए तराने नए यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल को। दिन के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे निकाय चुनावों की तैयारी पर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

में 309 नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल

0: शामिल है। मतदान 9 और 11 सितंबर 2026 को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा और मतगणना 14 सितंबर को होगी। इन चुनावों में 10,245 पार्षद पदों के लिए मतदान होना है। राजस्थान में पंचायतों और नगरीय निकायों के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज हमने स्टूडियो में एक ऐसी प्रशासनिक शख्सियत को आमंत्रित किया है जिन्होंने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे और जन विकास में दशकों तक अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। इतिहास में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त श्री राजेश्वर सिंह जी ने अपने दीर्घ प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान जयपुर और जालौर के जिला कलेक्टर, जयपुर, भरतपुर व उदयपुर के संभागीय आयुक्त तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव के शीर्ष पदों को सुशोभित किया है। इसके साथ ही आप राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव की एक लंबी यात्रा और जनसेवा के प्रति अनूठे समर्पण के साथ आइए स्वागत करते हैं श्री राजेश्वर सिंह जी का। सर, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: जी। हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए हम बता दें, बातचीत का सिलसिला हम सर के साथ शुरू करें। श्रोताओं को बता दें कि अगर आप भी मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो स्टूडियो में मौजूद राज्य चुनाव आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी से बातचीत कर सकते हैं। हमारे फोन लाइन जो है, स्टूडियो नंबर्स हैं वो हम आपको बताए देते हैं। 01412200600, 01412200700 और 01412200800 और साथ ही आप फोन कर सकते हैं 01412366477। चलिए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सर, नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद जैसे स्थायी निकाय सीधे रोजमर्रा के जीवन से लोगों के जुड़ाव में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में इस तरह के नगर निकायों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी नजर में?
1: देखिए, ऐसा है कि जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगर पालिकाएं हों या पंचायती राज संस्थाएं हों
0: जी,
1: वो एक तरह से लोकतंत्र की आधारशिला हैं और उनके माध्यम से जनसाधारण को एक शासन प्रशासन में प्रत्यक्ष सहभागिता का सुअवसर प्राप्त होता है
0: जी।
1: और स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही निपटाने में मदद मिलती है, ताकि जो राज्य और केंद्र सरकारें हैं वो ज़्यादा बड़े मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें
0: जी।
1: तो इसलिए आज से जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक लोकतंत्र का जो है ना आधार स्थली है और जो बेसिक ढांचा है ये भारतीय लोकतंत्र का।
0: जी, बिल्कुल सही बात। अब आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या होती है, आम मतदाता के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर और काम को आप किस तरह सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझा सकते हैं?
1: देखिए, जो संसद और विधानसभा है उसके चुनाव के लिए तो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और राज्य में जो नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 243 के तहत जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त पद की व्यवस्था की गई है
0: जी।
1: ये एक सदस्यीय आयोग है और जो राज्य चुनाव आयोग और आयुक्त में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही संस्था है। और इसका जो मुख्य काम यह है कि जो निर्धारित समयावधि है उसमें अपन जो है नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ये संपन्न करा दें
0: जी। 38,000 कैंडिडेट्स जो हैं चुनाव जीतने की दौड़ में शामिल हैं। 309 निकायों के लिए चुनाव हो रहे हैं। औसतन 100 से ज्यादा प्रत्याशी एक सीट के लिए दावेदार है और चुनाव चिन्हों का आज आवंटन भी प्रत्याशियों को हो जाएगा। तो ये जो चुनाव चिन्ह होता है सर, कितना निकायों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है ये चुनाव चिन्ह, जो हमारे प्रत्याशी रहते हैं, मतदाता जो हैं कैसे पहचान सकते हैं प्रत्याशियों को, उसकी पहचान माने जाते हैं चुनाव चिन्ह?
1: देखिए, ऐसा है कि हमने जो है जो नगर पालिका सदस्य हैं उनके लिए 40 मुक्त प्रतीक इसकी व्यवस्था कर रखी है
0: जी।
1: और वो सिंबल जो है वो प्रत्याशी अपने

0: इच्छा अनुसार जो है चुन सकता है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है
1: जी।
0: इसके अलावा हमारे 8 जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिसमें 6 तो राष्ट्रीय दल हैं और 2 राज्य स्तरीय दल हैं
1: जी।
0: तो उनके जो अपने चुनाव चिन्ह जो है वो आरक्षित हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो मान्यता प्राप्त दल होते हैं उनके कैंडिडेट्स के नाम के प्रथम अक्षर से जो है उसको हम संयोजित करते हैं और अल्फाबेटिकली हम उसको अरेंज करते हैं मतपत्र में, और उसके बाद जो ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं ये लोग मुक्त प्रतीक का चयन करते हैं और उसमें से उनको जो है अरेंज किया जाता है मतपत्र पर। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए टेलीफोन है एक मुक्त प्रतीक है, तो अगर 2 सदस्य जो है या 2 कैंडिडेट जो है वो एक ही चिन्ह चाहते हैं तो उनके बीच में लॉटरी निकाली जाती है, तो इस तरह से इसका फैसला होता है
1: जी। जिसके हाथ पे पहले वो निशान आया लॉटरी के जरिए तो उसी को आवंटित कर दिया जाता है। अगला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, निकाय चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की किस तरीके से तैयारियां हैं सर, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: देखिए ऐसा है कि जो हमारी मशीनरी है वो तो जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की ही है। हम उन मतलब जो जितने राजस्थान के 41 जो है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हैं वो राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी हैं
1: जी।
0: और फिर 309 जो नगरीय निकाय हैं उनके लिए अलग से हम लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर की व्यवस्था कर रखी है जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के SDM स्तर के अधिकारी होते हैं। तो ये तो ढांचा है जिसके माध्यम से चुनाव होता है। इसके बाद जो है मतदान केंद्र हैं, तो पूरे राजस्थान में जो नगरीय क्षेत्र हैं उसमें 16,482 मतदान केंद्र हैं, तो हर मतदान केंद्र के लिए हम एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की और कुछ पोलिंग ऑफिसर्स की व्यवस्था करते हैं
1: जी।
0: तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो पूरे उस मतदान प्रक्रिया के इंचार्ज होते हैं, तो वो जो है वहाँ पर अपने जो EVM वगैरह है वो लेकर के जाएंगे और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो पूरी चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेंगे
1: जी।
0: उसमें जो मतदान अधिकारी हैं वो उनका सहयोग करते हैं। बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर केंद्र पर जो है वो पुलिस बल की व्यवस्था होती है। इसके अलावा जो है हमारे सारे जोनल और एरिया मजिस्ट्रेट वो जो है वो निरंतर क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, उनके साथ पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टीज भी होती हैं। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है हर जगह कि मुझे लगता है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो जाएंगे
1: जी। कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके
0: जी।
1: कई बार कहा जाता है कि राजनीति और लोकतांत्रिक भागीदारी की शुरुआत स्थानीय स्तर से होती है, क्या निकाय चुनाव युवाओं और नए उम्मीदवारों के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने और राजनीति में अपनी भूमिका शुरू करने का एक महत्वपूर्ण अवसर की तरह होते हैं? वो जोरों शोरों से लगे रहते होंगे अपने आप को दिखाने के लिए।
0: यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बेसिकली क्या है कि 18 साल की उम्र में तो आदमी मतदाता बन जाता है और 21 साल की जो उम्र है उसमें वो पंचायती राज संस्थाओं का और नगरीय निकायों का चुनाव लड़ सकता है
1: जी।
0: तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी, बहुत से लोग तो अध्ययनरत भी हैं, MA वगैरह की लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, BEd की कर रहे हैं और वो भी जो है इस चुनाव में कैंडिडेट हैं
1: जी।
0: तो निश्चित रूप से ये युवाओं के लिए एक तो अवसर है, दूसरे क्या है कि वो अपनी कार्य क्षमता और दक्षता और लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता ये प्रदर्शित करने का एक साधन भी है। तो और इसके माध्यम से जो है वो जो संसदीय और विधानसभाई राजनीति है उसमें उनकी एंट्री हो सकती है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। और निश्चित रूप से जितने ज्यादा युवा होंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि वो उत्साही और ऊर्जावान भी होंगे अपने उम्र के हिसाब से, और वो निश्चित रूप से अगर उनको मौका मिलता है तो वो अपनी भागीदारी निभाएंगे
1: जी। श्रोता जो है, हमने शुरुआत की जब हमारे कार्यक्रम की तो श्रोताओं से कहा था कि आपसे बातचीत कर सकते हैं, तो एक बार फोन कॉल लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या सवाल है उनके आपके लिए। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
2: मोहम्मद रफीक।
1: हाँ जी मोहम्मद रफीक जी, अपना सवाल करें।
2: मैम आज किस विषय पर चल रहे हैं?
1: माफ कीजिएगा, अच्छा, आप अभी जानते नहीं है टॉपिक, ऐसा कीजिए आप हमारा प्रोग्राम जो है वो सुनिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस चीज पर हमारी जो है चर्चा चल रही है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, हेलो,
2: हाँ ये पंचायत राज से संबंधित कार्यक्रम रेडियो जयपुर।
1: हाँ जी, हाँ बोली,
2: मेरा
1: अपना नाम बताएं।
2: मेरा नाम रणविजय।
1: रणविजय जी, अपना सवाल करें।
2: मेरा सवाल ये है मैडम कि ये जो पंचायत राज का जो कानून भारतीय संविधान है उसमें सिंबल जो है नगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए सिंबल प्रदान नहीं होता है।
1: अपना प्रश्न थोड़ा सटीक रूप से रखेंगे, स्पष्ट रूप से रखेंगे।
2: कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेल्स यू, राजेश्वर सिंह जी नमस्कार, कि नगर निकाय और पंचायत राज में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहता है।
0: नहीं, इसमें ऐसा है कि जो हमारे यहाँ राजस्थान पंचायती राज एक्ट और रूल्स बने हुए हैं और म्यूनिसिपल जो
2: है, तो ये राजस्थान का एक्ट भारत के संविधान से अलग है क्या?
0: नहीं,
2: संविधान भारत के संविधान से अलग चल रहा है।
0: नहीं, भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
2: नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रन बाय नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू दैट देयर कैन नॉट बी नो सिंबल नगर पालिका इन पंचायत राज इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
0: आपकी जानकारी सही नहीं है, उसको दुरुस्त कर लीजिए। जो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत है उसके जो चुनाव हैं वो निर्दलीय आधार पर होते हैं, उसके बाद जितने पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हैं और नगर पालिका और नगरीय निकायों के चुनाव हैं वो पार्टी सिंबल के आधार पर भी होते हैं और निर्दलीय आधार पर भी होते हैं, और वो पूरा भारतीय संविधान के अनुरूप है।
1: अगले श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो
3: हेलो,
1: अपना नाम बताएं।
3: मैं सीतू सैनी चौमू सिटी से बात कर रहा हूँ।
1: सीतू जी, अपना सवाल करें।
3: मेरा सवाल सर से ये है कि आपने मतलब रेडियो मतलब चुनाव की बात या फिर चुनाव से रिलेटेड जनता को अवेयर करने के लिए आपने रेडियो ही क्यों चुना?
1: जी
0: देखिए, ऐसा है कि जो दूरदर्शन और आकाशवाणी है ये लोकप्रिय माध्यम है, और बहुत सारे जो दूरदराज के इलाके हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें जो लोग जो है आकाशवाणी के निरंतर वो श्रोता हैं, तो उस लिहाज से जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं तक अपनी बात पहुँचे, और मुख्य रूप से जो रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, दूरदराज के इलाके के लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुँचे और उनके मन में कोई शंका हो तो उसका समाधान हो सके, इसके लिए माध्यम चुना गया है।
1: जी, लगातार श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं, और इसी दौरान बीच हम भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। सर, आज चुनाव प्रचार का एक बड़ा माध्यम सोशल मीडिया भी बन चुका है। कई बार सोशल मीडिया पर गलत खबरें, भ्रामक सूचनाएं और प्रचार सामग्री तेजी से वायरल हो जाती है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर होने वाले चुनाव प्रचार और भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर किस तरह से नजर रखता है और क्या कार्यवाही करता है?
0: देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका सोशल मीडिया पर जो है अकाउंट बना हुआ है
1: जी,
0: और जो ही इस तरह की कोई भ्रामक स्थिति पैदा होती है
1: जी,
0: तो उसके बारे में हम लोग तुरंत जो है वो स्पष्टीकरण वगैरह जारी कर देते हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग में और जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ 24 आवर्स के लिए कार्यरत जो है वो नियंत्रण कक्ष भी है, तो वहाँ से भी लोग जो है वो इन भ्रामक सूचनाओं के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, म्यूजिकल ब्रेक, और फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं माइक पर मुख्य कार्यक्रम, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमारे स्टूडियो नंबर डायल कर सकते हैं 01412200600 या फिर 01412200700। इसके अलावा दो फोन लाइन्स और हैं 01412200800 और 01412366677।

0: एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम माइक पर मुखिया में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। और आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप सभी श्रोता अगर बातचीत करना चाहते हैं, मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो आप स्टूडियो नंबर डायल कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर है 01412200600, 01412200700, 01412200800। और इसके अलावा एक और फोन लाइन है 01412366477। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल सर आपसे ये करना चाहेंगे कि मतदान के लिए मतदाता सूची सबसे महत्वपूर्ण आधार है। इस चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है। वोटर लिस्ट बनाना चुनौतीपूर्ण रहता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कई लोग अपने निवास स्थान से दूसरे शहर में बस जाते हैं, तो उनको मतदाता सूची में कैसे अपडेट किया जाता है, कितना चुनौतीपूर्ण ये कार्य रहता है?
1: देखिए, ऐसा है कि जो मतदाता सूची बनाई जाती है
0: जी,
1: तो उसमें आम तौर पर जो उस इलाके में निवास करने वाले लोग हैं उनको शामिल किया जाता है
0: जी।
1: और जो भी 1 जनवरी को 18 साल की उम्र जिसने प्राप्त कर ली उसका वो नाम जुड़वाने के लिए पात्र हो जाता है। और दूसरा ये है कि जो एब्सेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स हैं उनके नाम हम लोग डिलीट कर देते हैं
0: जी।
1: तो उसके बाद से फिर ये फाइनल जो हमारी मतदाता सूची है वो बन जाती है। और उसमें जो एडिशन डिलीशन का काम है, जो हमारा नॉमिनेशन पेपर जो है लेने का आखिरी दिन था उस दिन तक जो है हम लोगों ने नगर पालिका में जोड़ा है
0: जी।
1: पंचायतों में इसको हम जो है चुनाव घोषणा तक जोड़ते हैं
0: जी।
1: तो वो निरंतर अपडेट होती रहती है
0: जी। और मतदान का सब जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान के दिन मतदाताओं को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, साथ ही मतदान केंद्रों पर भीड़ ना हो, मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और हमारे लिसनर्स के जरिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं वो सुचारू रूप से, खुद कैसे योगदान दे सकते हैं मतदाता?
1: देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए
0: जी,
1: नंबर वन
0: जी।
1: नंबर टू जो है आपके पास जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, और उसके अलावा जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हम लोगों ने अलाउ किया है, जिसमें जैसे मान लीजिए नरेगा कार्ड है, सोशल सिक्योरिटी का कार्ड है, और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो बहुत सारे जो मतदाता के पास आधार कार्ड है, तो ये सारी चीजें लेकर के आप अपना मतदान कर सकते हैं। मतदाता की मदद के लिए हर मतदान केंद्र के बाहर एक वोटर हेल्प डेस्क, मतदाता सहायता डेस्क का जो है वो प्रावधान किया गया है
0: जी,
1: जो कि स्थानीय बीएलओ वहां पर रहते हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, और प्लस जो स्थानीय कर्मचारी वगैरह होते हैं वो उनकी मदद के लिए उपलब्ध होते हैं। अगर मान लीजिए वो मतदान केंद्र नहीं है मतदाता का, किसी बगल के मतदान केंद्र में जो है उनका वोट पड़ना है, तो वो भी उनको उस दिन गाइडेंस वो दे देंगे। तो कायदे में जो है जैसे लाइन लगा करके मतदान वगैरह किया जाएगा। जो दिव्यांग मतदाता है उनको हम लोगों ने ले आने और ले जाने की व्यवस्था की है
0: जी।
1: और जो बुजुर्ग मतदाता हैं, तो ये भी युवा मतदाताओं का कर्तव्य है कि वो जो है लाइन में उनको आगे बढ़ाएं। एक तरह से एक नागरिक का कर्तव्य भी है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करें और उनको सुविधा प्रदान करें
0: जी। हमारे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे श्रोता भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो एक सवाल ले लेते हैं श्रोताओं का। हेलो,
2: नमस्कार मैम
0: जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार,
2: मैं रिशपाल गोदारा बीकानेर से बोल रहा हूँ
0: जी। अपना सवाल करें
2: मैम। सर से ये पूछना था, ये जो चुनाव होता है बहुत बढ़िया बात है, पर इसके अंदर ये जो वोट खरीदते हैं लोगों को पैसे देके इस तरह से करते हैं, तो फिर लोकतंत्र में एक प्रकार से वो साफ छवि से नहीं होता सुना जाता।
1: देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही गलत है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि जो है जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनकी खरीद फरोख्त की जाए। वैसे तो हम लोगों ने समय जो है बहुत कम दिया है हर गतिविधि के लिए, तो एक तो संभावना जो है काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत कम समय है तो लोगों को मैनेज और मैनिपुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा। नंबर दो ये है कि जहां राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त हो जाता है वहां पर भी ऐसी कोई संभावना नहीं होगी, संभावना वही होती है जहां पर कि बहुमत प्राप्त नहीं होता है और उसके बाद जो है वो जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको या निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको साधने की जब कवायद शुरू होती है तो उसमें इस तरह के जो लोग हैं इस तरह की प्रवृत्तियां जो है वो प्रोत्साहित होती हैं। मेरा तो आम जनता से यही निवेदन है कि वो इस तरह के जो लोग हैं जो ईमानदार हों, निष्ठावान हों, कर्मठ हों और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध हों, ऐसे लोगों को ही वो चुनाव में चुने जिनके भविष्य में बिकने की संभावना नहीं रहे। तो ये जो है आम जनता की जिम्मेदारी इसमें सबसे ज्यादा होती है।
0: बिल्कुल। निरंतर श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं, एक और फोन कॉल लेते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए। हेलो हेलो
4: हेलो
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए।
4: मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है और अम्बावाड़ी जयपुर में रहता हूँ।
0: हाँ जी हरिमोहन शर्मा जी, सवाल कीजिए।
4: मैडम जी, ये मेरा सवाल है कि मैंने वोट मेरी वाइफ के बच्चे के बच्चे की बहू का वोट दूसरे आई थी शादी होके, उसका तो वोटर आ गया वोट कार्ड, और हमारा वोट कार्ड प्रिंटिंग में दिखा रहा है पिछले 4 महीने से
0: जी।
1: देखिए ऐसा है कि जो मतदाता सूची है उसमें नाम होना चाहिए और उसके बाद आप जो है आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट, आपका 11 तरह के डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है, तो उनके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं।
0: हेलो हेलो
5: हेलो
0: हाँ जी जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
5: मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है, मैं दीदवाना जिले से बोल रहा हूँ।
0: जी मोहम्मद सिकंदर जी, सवाल कीजिए।
5: जी सर,

0: से मेरा ये सवाल है कि मैं विकलांग हूँ
1: जी,
0: और जब वोट देने के लिए जाता हूँ तो वहाँ जो अधिकारी होते हैं वो वोट खुद देते हैं, तो उसमें मैं वोट क्यों नहीं दे सकता या मेरा गार्जियन क्यों नहीं दे सकता? अगर मैं जिद करता हूँ तो वो कहते हैं कि आप बाहर चले जाइए
1: जी,
0: इसका कोई उपाय बताइए सर।
2: क्या है ये?
1: विकलांग है, दिव्यांग है।
2: हाँ हाँ जी, नहीं इस बार हम लोगों ने जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको ले आने और ले जाने के लिए व्यवस्था की है, इसका बाकायदा सर्वेक्षण कराया हुआ है और वहाँ पर व्हीलचेयर वगैरह मौजूद रहेगी केंद्र पर, और जो आपके मदद के लिए जो स्थानीय कर्मचारी हैं वो उपलब्ध रहेंगे, तो वो आराम से ले जा करके आपको मतदान करवा देंगे, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं
1: है। एक और कॉल। हेलो हेलो हेलो। चलिए श्रोताओं के फोन कॉल्स जो हैं लगातार आ रहे हैं, लेकिन एक श्रोता जुड़े रहते हैं तो दूसरे श्रोता फोन करते रहते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन। सर बात हो रही है इसी बात की कि वोट सुरक्षित रहता है या नहीं रहता है। अभी जो हमारे साथ एक जुड़े थे हमारे श्रोता, वो भी उनके मन में भी यही सवाल था। तो मतदाता के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि उसका वोट सुरक्षित है या नहीं, फर्जी मतदान या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मतदान जैसी स्थिति को रोकने के लिए आयोग ने क्या इंतजाम किए हैं?
2: देखिए दो बातें हैं, एक तो यह है कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए
1: जी,
2: दूसरा यह है कि जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स में कम से कम एक डॉक्यूमेंट जो है उस आदमी के पास होना चाहिए ताकि उसका जो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है वो इस्टेब्लिश हो सके
1: जी,
2: और तीसरा जो है वहां पर जो प्रत्याशी हैं या उनके एजेंट हैं वो मौके पर मौजूद रहते हैं
1: जी।
2: तो अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो स्थानीय कर्मचारियों की मदद से जो है वो उसको उस ऑब्जेक्शन को दूर किया जा सकता है
1: जी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का मतदान करना बेहद जरूरी होता है, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में या ऐसे क्षेत्रों में जहां मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहता है। तो इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग की ओर से क्या विशेष जागरूकता अभियान या प्रयास किए जा रहे हैं? पिछले निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना रहा था और अब कितना बढ़ने का आसार है?
2: देखिए ऐसा है कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं उनके मुकाबले स्थानीय निकायों का जो मतदान प्रतिशत है वो कम ही रहता है
1: जी,
2: और ये पहली बार है जब वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सारे जो स्थानीय निकाय हैं उनका चुनाव एक साथ हो रहा है
1: जी,
2: इसके बाद सारी पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव एक साथ होगा
1: जी।
2: तो हम लोगों ने जो है मतदाता जागरूकता अभियान चला रखा है, और जो हमारे स्वीप के प्रभारी होते हैं वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होते हैं
1: जी,
2: फिर डिस्ट्रिक्ट स्वीप कोऑर्डिनेटर होते हैं वो डिग्री कॉलेज के व्याख्याता वगैरह होते हैं
1: जी,
2: और हर स्कूल कॉलेज में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब बनाया हुआ है जिसमें जो बच्चे हैं वो कैंपस एम्बेसडर होते हैं
1: जी।
2: तो इनके माध्यम से पूरे राजस्थान में रंगोली, मतदाता जागरूकता रैली, वृक्षारोपण अभियान, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब जो है आयोजित किए जा रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य ये है कि मतदाताओं को उनके मत की कीमत समझाई जाए कि उनके एक मत का क्या महत्व है, उसका लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या योगदान हो सकता है
1: जी,
2: और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मत डालने के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें हम युवा पीढ़ी का, स्वयंसेवी संस्थाओं का, राजनीतिक दलों का, सबका पूरा सहयोग ले रहे हैं
1: जी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी से बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माइक पर मुखिया, और श्रोता अगर जुड़ना चाहते हैं, मतदान संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, तो स्टूडियो में जो हमारे स्टूडियो नंबर्स हैं उन पर कॉल कर सकते हैं 01412200, 01412200700, 01412200800 और 01412366477। ये हमारे फोन लाइंस हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम माइक पर मुखिया में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी। लगातार श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं और सवालों का सिलसिला उन्हीं से प्रारंभ करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, अपना सवाल करें और नाम बताएं पहले।
1: मैं गुड्डू बोल रहा हूँ, खजाने वाले रास्ते से।
0: जी गुड्डू जी, सवाल करें।
1: मेरा सर से सवाल ये है कि जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं, इन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सिंबल दिया जाता है, तो उसका उपयोग मतलब चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए? और मतलब मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि वो अपने घर ले जाए या जमा होता है, इस तरह की बात है।
2: नहीं, वो तो जो अपने चुनाव के लिए उनको ऑथराइजेशन लेटर वगैरह है, वो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, तो वो जमा करने का भी कोई प्रावधान नहीं, वो चाहे तो अपने साथ ले जा सकते।
0: अगला सवाल। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
3: मैं नागौर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी, अपना नाम बताएं। हेलो,
3: नाम अभी कहाँ है मैडम?
0: हाँ जी, सवाल कीजिए।
3: मैडम मेरा सवाल ये है कि हेलो,
0: हाँ जी सवाल कीजिए, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो
4: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल करें।
4: मेरा नाम प्रमोद कुमार है।
0: जी प्रमोद जी, सवाल कीजिए।
4: नगर से बोल रहा हूँ
0: जी, अपना सवाल।
4: मेरा सवाल है कि म्युनिसिपलिटी में के चुनाव में 18 साल की जो उम्र है, वो विधानसभा लोकसभा में भी है क्या?
2: नहीं, विधानसभा लोकसभा में तो जो 25 साल की उम्र के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें जो है वो 21 साल की उम्र के जो मतदाता हैं वो भी प्रत्याशी बन सकते हैं।
0: हेलो हेलो
5: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए।
5: संदीप जैन बोल रहा हूँ जयपुर से।
0: जी
5: मेरा एक सवाल है कि अभी जैसे नगर निगम के चुनाव है जयपुर में, तो उसके अंदर हमने अपना नाम अभी रिसेंटली लिखवाया था और लिस्ट में आ भी गया है, परंतु नाम के अंदर त्रुटियां हैं, हमारा नाम गलत लिखा गया है या पिताजी का नाम गलत लिखा गया है, इस तरह की कुछ त्रुटियां हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमें वोट देने से वंचित तो नहीं।

0: किया जाएगा। और दूसरा ये था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम इस त्रुटियों को कैसे ठीक करवा सकते हैं।
1: देखिए, अभी तो जो है जो मतदाता सूची है वो फाइनल हो चुकी है, उसमें शुद्धिकरण का जो प्रावधान था वो नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने की अंतिम तिथि तक था। अब जब ये हो गया है, क्या नाम, फाइनली ये जो है पब्लिश हो चुकी है, तो अभी तो शुद्धिकरण नहीं हो सकता, लेकिन अगर मामूली त्रुटियां हैं तो उसके आधार पर आपको वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है
2: जी। और आगे के लिए अगर ठीक करना हो,
1: आगे के लिए ये प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फिर वो करवा सकते हैं
2: जी। हेलो हेलो हेलो हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
3: मैं शेफाली जांगिर बोल रही हूँ, जयपुर ग्रामीण से।
2: जी शेफाली जी, अपना सवाल करें।
3: मैं से पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक सीट पे एक से अधिक कितने उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि 100 से अधिक उम्मीदवारों ने इसमें पर्चा भरा है
2: जी,
3: तो इससे ऐसा समस्या आती है कि वोट बिखराव की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि ऐसे किसी किसी जगह से कि जो अपनी सेम कास्ट का होता है लोग उसी को वोट देते हैं, तो एक स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तो इसकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है
2: जी?
1: नहीं, इसमें तो क्या है कि लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का और वोट मतलब चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता का प्रत्याशी के रूप में वो अधिकार प्राप्त है, उसको तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। और लेकिन जो आम जनता है वो अगर अपने विवेकपूर्वक अपने उसका इस्तेमाल करे मताधिकार का, तो निश्चित रूप से जिनको बहुत कम वोट मिलेंगे तो वो भविष्य में जो है वो प्रत्याशी बनने से हतोत्साहित होंगे और चुनाव प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल नहीं हो पाएगी।
2: हेलो,
4: नमस्कार मैम।
2: जी नमस्कार,
4: के बी शर्मा निवेदन कर रहा हूँ जयपुर।
2: जी के बी शर्मा जी, अपना सवाल कीजिए।
4: सर मेरे दो प्रश्न है कि एक तो ये कि आप तो विभिन्न जगहों पे जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पे रहे हुए हैं, तो राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहाँ की भौगोलिक स्थिति, कई मिट्टी के टीले भी है, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, तो वहाँ कम से कम दूरी जो मतदाता है उनका एक निश्चित अनुपात चुनाव आयोग की तरफ से कुछ रखा जाता है कि ज्यादा उनको श्रम ना लगाना पड़े अपना मतदान करने के लिए? और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि सर आदर्श आचार संहिता का जो एक उल्लेख हमारे निर्वाचन विभाग द्वारा और देश में किया गया है, तो इसकी 100% अक्षरतः कैसे पालन जिला मजिस्ट्रेट या ईआरओस के माध्यम से कराई जा सकती है, इसका थोड़ा सा मैं बस आपसे जानकारी चाह रहा हूँ।
1: देखिए, ऐसा है कि जो आम तौर पर मतदान केंद्र होते हैं वो 1200 की मतदाता संख्या पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और अगर जो है कहीं पर 1400 से ज़्यादा मतदाता हो जाते हैं तो हम लोग वहाँ एक सहायक मतदान केंद्र की भी व्यवस्था करते हैं। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस चीज़ का पूरा जो है रखा गया है ध्यान की जो है कम से कम दूरी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। दूसरी बात यह है कि जो आपने आचार संहिता की पालना के लिए कहा, तो इसमें हम लोगों ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, जिला कलेक्टर्स ने भी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, उनको आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया है। मुख्य रूप से यह है कि इस दौरान जो है जो सरकारी संसाधन हैं उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, और जो नई कोई घोषणाएं नहीं की जाएगी, नए कोई विकास कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, और ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे सत्तारूढ़ दल को फायदा मिले। और इस सारी प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए हमने भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जिला पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अगर कहीं भी कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो वो पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएंगे, और उनके द्वारा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर राज्य चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे।
2: जी, अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो हेलो
5: हेलो,
2: हाँ जी, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए।
5: नमस्ते मैडम, नागौर से बोल रहा हूँ हबीब खान।
2: हाँ जी बोले, अपना सवाल कीजिए।
5: मैडम मेरा सवाल ये है कि अगर किसी मतदाता को चुनाव संबंधी कोई शिकायत या कोई समस्या है तो वह कहाँ और किस प्रकार शिकायत कर सकता है?
2: जी
1: देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मतदान केंद्र के बाहर

0: एक मतदाता सहायता डेस्क, वोटर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जिस पर जो है बूथ लेवल ऑफिसर भी रहेंगे और उनके साथ स्थानीय कर्मचारी रहेंगे। तो पहला तो वहाँ पर है, और उसके बाद जो है जो मतदान केंद्र के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ भी अगर समाधान नहीं हो तो जो उस क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर या जोनल मजिस्ट्रेट हैं तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, और जिला स्तर का जो कंट्रोल रूम है उसे में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
1: अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल कीजिए सर।
2: मैडम मेरा नाम भंवरलाल तंवर है।
1: जी भंवरलाल जी, सवाल कीजिए।
2: मैडम मेरा सवाल यह है कि मैं दिव्यांग हूँ, ब्लाइंड हूँ मैडम। तो जो पहले एमएलए के चुनाव होते थे उस समय तो सिस्टम ये था कि घर पे मतदान कराया गया मेरा, और इस बार ये घर का मतदान इन्होंने बंद कर दिया।
1: जी
2: ऐसा क्यों मैडम?
0: देखिए ऐसा है कि स्थानीय चुनाव में कभी भी इस तरह की व्यवस्था नहीं रही है। ये लोकसभा विधानसभा चुनाव में पिछली बार से ये चालू हुआ है, और संसाधनों की व्यवस्था हो जाएगी तो हम भविष्य में इस तरह की प्रणाली हम लोग भी जो है वो अपनाएंगे। और जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने घर से ले आने और ले जाने की व्यवस्था करेंगे। आगे जब कभी चुनाव होंगे तो उसमें आपके सुझाव का भी हम लोग ध्यान रखेंगे।
1: जी अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो, हेलो
3: जी मैडम नमस्ते।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: मैं सीताराम शर्मा झुंझुनू से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी सीताराम जी, अपना सवाल कीजिए।
3: मेरा सवाल ये मैडम, जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है उसके नाम में और डीओबी में अंतर है, मतलब बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड के, आधार कार्ड आदि स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो नाम में और डीओबी में डिफरेंस है, उसको सही कैसे करवाएं, मतलब वोटर आईडी में?
1: जी
0: देखिए, जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ था उस समय जो है वो सही समय था जब अपन इस तरह की त्रुटियों को दुरुस्त करा सकते थे, और अभी पिछले जो है जब हमारी मतदाता सूची फाइनली जो है पब्लिश हुई तो उस समय भी अपन ये करा सकते थे। अब वो समय बीत चुका है, हालांकि इसके आधार पर जो है हमारे निर्देश हैं कि छोटी मोटी त्रुटियों के आधार पर जो है वो आदमी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाए, और इस चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद जो है आप अपने नाम का शुद्धिकरण या जो भी सूचनाएं हैं उनका शुद्धिकरण करवा सकते हैं।
1: अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो,
4: हेलो, नमस्कार मैम, मैं आलोक सक्सेना बोल रहा हूँ।
1: जी आलोक जी,
4: दृष्टिवादी मतदाता, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारे बीएलओ चेंज हो गए, हम नए, हमारे कौन से बीएलओ है इसकी जानकारी हम कैसे ले सकते हैं?
0: ये अपने जो क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर हैं नगरीय निकाय के, उनके कार्यालय से भी ले सकते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: हेलो,
5: हेलो,
1: हाँ जी, अपना नाम बताएं।
5: जी मैम, मेरा नाम नुमान है।
1: हाँ जी नुमान, अपना सवाल करें।
5: मेरा सवाल दस ही है कि चुनाव को सुरक्षित तरीके से कैसे कराया जा सकता है, जैसे कि हमने सुना है कि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है, तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो तो इसके लिए सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है?
1: जी
0: इसमें ऐसा है कि जो ईवीएम का रेंडमाइजेशन होता है उसमें हम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं और उनकी उपस्थिति में ही रेंडमाइजेशन होता है, नंबर वन। नंबर टू, जहां स्ट्रांग रूम वगैरह बनता है तो वो भी पब्लिक की जानकारी में होता है, वहाँ पर कोई भी आवागमन होता है तो रजिस्टर में बाकायदा उसकी एंट्री की जाती है, और केवल अथराइज्ड जो पर्सन्स हैं वही आवागमन उसमें कर सकते हैं। तो मुझे, और पूरे भारत में जो है वो इसके ईवीएम के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, अब ये अलग बात है कि उसको लेकर के जो है वो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन अभी तक जो केंद्रीय चुनाव आयोग है या राज्य चुनाव आयोग है उसको इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि जो पुख्ता जानकारी कि इसको जो है हैक किया गया हो कभी या इसमें हैक किए जाने की संभावना हो।
1: जी राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी, एक सवाल हम भी आपसे करना चाहेंगे। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नामांकन से लेकर के चुनाव प्रचार और चुनाव खर्च तक के नियम होते हैं, उम्मीदवारों को ऐसी कौन कौन सी सामान्य गलतियों से बचना चाहिए जिसकी वजह से बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है?
0: देखिए इसमें हम लोगों ने जो नगर पालिका चुनाव है उसके लिए वार्ड में

0: के लिए रखा है कि 1.5 लाख रुपए तक वो खर्च कर सकते हैं, नगर परिषद में 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं सदस्य पद के लिए, और नगर निगम के पार्षद पद के लिए जो है वो 3.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं
1: जी।
0: तो उनको जो भी पोस्टर बैनर या प्रचार सामग्री वगैरह करनी है वो इस सीमा के अंतर्गत करनी चाहिए। नगर पालिका सदस्य जो है वो प्रचार के लिए 1 वाहन का उपयोग कर सकते हैं, नगर परिषद के जो सदस्य हैं वो 2 वाहन का, और नगर निगम के जो सदस्य हैं वो 3 वाहन का उपयोग कर सकते हैं
1: जी।
0: तो इनको जो है ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो उस सीमा के अंतर्गत ही अपना व्यय एक तौर करें, और चुनाव समाप्ति के 15 दिन के अंदर वो रिटर्निंग ऑफिसर को अपना जो है वो खर्चा दे दें कि हमारा इतना व्यय हुआ है, अन्यथा जो है वो भविष्य में उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है
1: जी। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर से लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी के साथ में।

0: है आपका कार्यक्रम एक प्रमुख में। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद राज्य निर्वाचन राजस्थान श्री राजेश्वर सिंह जी, और लगातार श्रोताओं फोन आ रहे हैं, सवाल लेते हैं सर उनके। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम
1: जी।
0: बताएं।
1: सूरतगढ़ से बोल रहा हूँ, कुंदन कटारिया
0: जी। कुंदन जी, अपना सवाल करें।
1: मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं ना ईवीएम हैक हो गई है, ये खराब हो गई है, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए
0: जी।
2: देखिए, ऐसा है कि जो ईवीएम है वो उसका हैक होने या उसके मैनिपुलेट होने की बहुत कम संभावना रहती है या बिल्कुल गणनीय संभावना रहती है। अभी तक की तो स्थिति यही है, कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं कर पाया कि इसको कर सकते हैं या अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो ये खराब होते हैं जब प्रोसेस के दौरान, तो हम लोगों ने 15-20% जो है वो हर जगह व्यवस्था कर रखी है, जो तुरंत उनको रिप्लेसमेंट दिया जाता है। हमारे हर जिले में जो है इंजीनियर्स, जो कंपनी है उसके इंजीनियर्स भी रहते हैं, जो कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान कर देते हैं।
0: अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो
3: जी, आदरणीय उद्घोषण महोदय, राधे राधे।
0: अपना सवाल करें और अपना नाम बताएं उसके पहले
3: जी। मेरा ऋषि कमल है, कैलाश चंद्र कमल
0: जी,
3: विद्यार्थी में बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, अपना सवाल कीजिए।
3: आंखों से थोड़ा फिजिकली वो नहीं हूँ, मेरा मेरा वोटिंग आता है देवी नगर में, तो क्या मेरे पास आधा वो कार्ड सब है मेरे पास फैसिलिटी, तो क्या यहाँ कोई विद्यार्थी नगर में ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ वोटिंग कर सकता हूँ, मेरी इच्छा है।
2: जो अपने दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, उनको घर से ले जाने की, अभी सर्वे किया गया है, तो अपने सोशल सिक्योरिटी ऑफिस जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, उनको अपना नाम नंबर पता वगैरह नोट करा दीजिए, तो वहाँ से हम लोग व्यवस्था कर देंगे
0: जी। अगले श्रोता का सवाल लेते हैं। हेलो।
4: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल कीजिए।
4: हाँ मैडम, पंकज सोनी बोल रहा हूँ
0: जी। पंकज जी,
4: अभी भाई ईवीएम हैक हो सकती और उसके अंदर भाई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो इसको रिपोर्ट पे कौन करेगा? तो
0: जी,
2: तो ये तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है और जो राज्य चुनाव आयोग हैं, उन्होंने समय समय पर जब भी इस तरह के आक्षेप आए हैं तो उसके संबंध में जो है वो थर्ड पार्टी से इसका इवेल्युएशन कराया है, और वो जो सारी प्रक्रिया है वो बिल्कुल एरर फ्री है, त्रुटि मुक्त है, और ये कई बार सिद्ध हो चुका है।
0: हेलो
5: सर को नमस्कार। बहन जी नमस्ते।
0: नमस्ते सर, अपना सवाल।
5: जांगड़ बोल रहा हूँ, मुरलीपुरा जयपुर से
0: जी। सवाल कीजिए
5: सर। से ये दो तीन जिज्ञासा थी, मैं ये पूछ रहा था। एक तो सर, जैसे मान लीजिए हम गांव के रहने वाले हैं, मैं कुल्ली बैरोड जिले का रहने वाला हूँ और मैं दिव्यांग हूँ और यहाँ मतलब पिछले 15 साल से रह रहा हूँ गाँव अपने जयपुर में भाई के पास
0: जी,
5: और यहाँ के मेरे पास में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन इच्छा करती है वोट की यहाँ पे, अब गाँव गया नहीं जाता कि मैं ब्लाइंड हूँ
0: जी।
5: तो ये पूछ रहा था कि यहाँ किसी वजह से कर सकता हूँ, और दूसरे से SIR में कई लोगों के नाम कट चुके हैं, बहुत लोगों के, और वो बहुत परेशान है, तो उनको दोबारा से क्या सुविधा मिल सकती है कुछ?
2: देखिए, ऐसा है कि जहाँ मतदाता सूची में आपका नाम है वहीं आप अपना वोट डाल सकते हैं। अगर आप पिछले 10-15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो यही कहा जाता है कि जहाँ ऑर्डिनरली आदमी रहता है, जहाँ का ऑर्डिनरली वहीं पर उसको अपना मतदाता कार्ड बनाना चाहिए और मतदान का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ये तो अपने और क्या प्रश्न था इनका?
0: अगर नाम कट गया है तो अपडेट
2: तो जो SIR है उसमें जो है नोटिस वगैरह जारी किए गए हैं लोगों को, वो केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्रवाई है, उसका राज्य चुनाव आयोग से कोई लेना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनको नोटिस वगैरह देते हैं और पर्याप्त सबूत वगैरह पेश करने पर वो लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई करते हैं
0: जी। एक सवाल और करना चाहेंगे सर, समय बहुत कम रह गया और बहुत जरूरी सवाल है। चुनाव प्रक्रिया तकनीक लगातार बढ़ते जा रहा है, मतदाता सुविधा और चुनाव प्रबंधन और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह की डिजिटल तकनीक और सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहा है?
2: देखिए, अब एक तो मैंने बताया राज्य चुनाव आयोग का वगैरह और अन्य जो है
0: जी,
2: तो एक तो उसके ऊपर भी शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, फिर जो हमारा कंट्रोल रूम है वहां पर वर्बली भी

0: है वो जिला कंट्रोल रूम में भी कर सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह जो हैं तो उनके कार्यालय में भी इसको कर सकते हैं, और लगभग सारे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन लोगों का भी जो है ये फेसबुक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह ये मतलब खुला भी है और सक्रिय भी है, तो वहाँ उनका भी उपयोग करके जो है अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
1: अंत में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आकाशवाणी के माध्यम से राजस्थान के लाखों श्रोताओं के लिए आपका संदेश, मतदान के दिन हर मतदाता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किस तरह निष्पक्ष, निर्भीक और जागरूक होकर मतदान करना चाहिए, हमारे श्रोताओं को आप संदेश देना चाहेंगे सर?
0: देखिए, प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं, नगरीय निकाय हैं और पंचायती राज संस्थाएं हैं, ये हमारे लोगों की आधारशिला हैं। वहां पर जितने समझदार, सुसंस्कृत और विजनरी और जो स्थानीय समस्याओं से अवगत और उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं,
1: जी
0: अगर वो चुन करके इन निकायों में जाते हैं निश्चित रूप से एक जनता को सही प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा, उनकी समस्याओं का सही समाधान होगा और उनको जो है एक तरह से अपने जन से संतुष्ट प्राप्त होगा। तो मेरा आम जनता से यही निवेदन है कि जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है और चरित्र कैसा है, इन तीनों चीजों को जो है सोच करके ही अपने मत का, अपने पूर्ण विवेक का इस्तेमाल करते हुए प्रलोभन और भय मतदान करें ताकि स्थानीय लोकतंत्र है वो मजबूत हो सके।
1: जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री राजेश्वर जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को जो सवाल था जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: सुन रहे थे कार्यक्रम माइक पर मुखिया। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला प्रकाश बाबू, रविन्द्र कुमार चतुर्वेदी और अनवेंद्र प्रजापति का। प्रस्तुतीकरण योग रहा निरंजन कुमार शर्मा का। इसके प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर गौरव यादव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विविध भारती जयपुर केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था। श्रोताओं, आप सुन रहे थे राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह से आगामी निकाय चुनावों की तैयारी पर सजीव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को
2: अभी आप सुन रहे थे निकाय चुनावों की तैयारी पर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह के साथ सजीव फोनन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया गया। FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चरमे चैनल को। दिन के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा

0: भी दिलवाएगा।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
0: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: I am very happy to announce that GSLV.
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
3: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1282 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए 3,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरद्वत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के दौरान अब तक कुल 1730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम अभिनेता ऋषि कपूर को और गायक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजें। फिल्म का नाम है बॉबी।
2: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था कभी कभी। साहिर लुधियानवी के बोल थे, खय्याम साहब का संगीत था। और अब लेते हैं इस कार्यक्रम में एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए। गाने वाले कलाकार किशोर कुमार और साथी, फिल्म का नाम कर्ज़।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। गीत रचना संतोष आनंद की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी।
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलावेनिल वालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं। और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंखें। गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है और धुन आदेश श्रीवास्तव की है।

सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में हम आपको समीर का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है राजनीति, आवाजें आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की।

ये आवाजें थीं आदेश श्रीवास्तव, शशि और साथियों की। फिल्म का नाम था राजनीति। गीतकार थे समीर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। दिन का 1 बज रहा है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे इसरो की शानदार उपलब्धि और देश के लिए गर्व का क्षण बताया। गौरतलब है कि इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है। प्रदेश में नगर निकाय आम चुनाव में कल नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार शेष प्रक्रिया के तहत आज चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि चुनाव में पर्यवेक्षण कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का पर्यवेक्षण 7 से 14 सितंबर तक और

0: दूसरे चरण का पर्यवेक्षण 21 से 22 सितंबर तक होगा। जन्माष्टमी के अवसर पर आज प्रदेश भर में हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दे रही है। जयपुर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर सहित सभी छोटे बड़े कृष्ण मंदिरों में विशेष झांकियां सजाई गई हैं। कई स्थानों पर कृष्ण और राधा की बाल झांकियां निकाली जा रही हैं। घरों में भी झांकी सजाकर श्रद्धालु भजन और सत्संग कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाती हुई झांकियां निकाली जा रही हैं। श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंदिरों में सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं, साथ ही यातायात के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेशों से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी पर सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार होने की कामना की। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन आत्मा के उजास का पर्व है। श्री कृष्ण के कर्मयोग से शिक्षा लेते हुए हमें हमारे देश और प्रदेश की तरक्की के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से कल राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थियों ने मुलाकात की। NSS के राज्य दलनायक डॉक्टर विवेक कुमार की अगुवाई में लोक भवन में ये भेंट की गई। इस दौरान श्री बागड़े ने विद्यार्थियों को राष्ट्र प्रथम की सोच से काम करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने NSS की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम और टेक्सटाइल कमेटी ने रिसाइकल और अपसाइकल किए गए टेक्सटाइल की खरीद को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल सरकारी खरीद के जरिए प्री और पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट, स्क्रैप और पुराने कपड़ों से बने रिसाइकल और अपसाइकल किए उत्पादों को बढ़ावा देगी, जिससे सर्कुलर टेक्सटाइल इकोनॉमी में कंपनियों के लिए बाजार के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह MOU वेस्ट टू वैल्यू टू मार्केट इकोसिस्टम बनाएगा, जिससे टेक्सटाइल वेस्ट, स्क्रैप और पुराने कपड़ों को अच्छी क्वालिटी वाले वैल्यू एडेड उत्पादों में बदला जा सकेगा। प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून सक्रिय नजर आ रहा है। कल कई जिलों में हुई तेज बारिश के बाद आज भी मौसम विभाग ने 24 जिलों में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। विभाग के अनुसार भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग के अनेक इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बरसात का यह दौर रविवार तक जारी रह सकता है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल को FM 103.7 MHz पर। दिन के 1:05 हुए हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुनेंगे।
2: हम बीच गिनेश करें इस सफर का।

जी, तो श्री गणेश तो हो गया है ना इस कार्यक्रम का, और हम सफर पर निकल भी पड़े हैं। बहरहाल हम आपको बता दें, किशोर कुमार की आवाज में आपने फिल्म हम तुम और वो का गीत सुना। गीतकार वर्मा मलिक थे और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इस विस्तृत सुंदर सी इबारत के अनुसार कविता केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं, बल्कि मन के भीतर उठने वाली उन भावनाओं की आवाज है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। इसमें कम शब्दों के माध्यम से गहरे भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसमें शब्दों का ऐसा क्रम होता है जो सुनने में संगीत जैसा लगता है। कविता का एक सुंदर संसार प्रकृति भी है, लेकिन कविता केवल प्रेम और प्रकृति तक सीमित नहीं रहती। वो जीवन के रास्तों पर भी हमारे साथ चलती है। धूप हो या छाव, साथ हो या अकेलापन, वो हमें रुकने के बजाय चलते रहने और जीवन को गीत की तरह जीने की प्रेरणा भी देती है। इबारत में बहुत सारे लोकप्रिय गाने भी हैं और आपने उन लोकप्रिय गानों का जिक्र किया भी है। देखिए ना, हमने इबारत लंबी लिखी, लेकिन साथ में कोशिश यही की कि उस इबारत में छिपे गीत संगीत को आप पहचान लें, और आप लोगों ने पहचान भी लिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत तो इबारत नहीं है, इबारत 5-10 पंक्तियों की होती है। आपने तो पूरा निबंध लिखा है और उस अंत में गीतों के बोल लिख दिए, जैसे प्रिय प्राणेश्वरी या और बहुत सारे गीतों का। आप इसे जिस अर्थ में देखना चाहें ये आपकी पसंद है ना। हमने तो कोशिश की है कि जो कार्यक्रम आज हम लेकर आए हैं, यानी ऐसे गीत जो लिखे गए फिल्मों के लिए, लेकिन जिनमें कविता रही, कविता की सुगंध मिली, भावों की गहराई मिली, हमने उन गीतों का चयन आज किया है। और उन गीतकारों ने फिल्मी गानों को हिंदी कविता के रूप में जो पेश किया, वो बहुत ही लाजवाब रहा है उनका ये प्रयास। तो आज का ये कार्यक्रम हमने उन्हीं गीतों पर केंद्रित रखा है। तो जाहिर है बात कहने का अंदाज भी थोड़ा सा तो खुला होना ही होगा ना। किसी बात को समझाने के लिए आप उसकी तह तक नहीं जाएंगे तो क्या लिख पाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लंबे अंतराल के बाद सुरीला सफर लेकर आ रही छोटी बहना मंदाकिनी जी के साथ सभी मित्रों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लंबे अंतराल की तरह आज आपने इबारत बड़ी और लंबी डाल दी है। इस पर फिल्म आनंद में राजेश खन्ना द्वारा बोला डायलॉग याद आ गया, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। क्या बात है। तो आज का कार्यक्रम भी बड़ा है, देखिए ना।

इतनी बड़ी बात लेकर हम आए हैं कि जीवन में कविता क्या मायने रखती है, और फिल्मी दुनिया में जहां हर तरह के गाने लिखे गए हैं वहां पर भी हिंदी कविता कितने खूबसूरत रूप में लिखी गई है, सुनी गई है, समझी गई है, सराही गई है। क्या आप इसे बड़ा नहीं मानते? एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं आप, आपका हार्दिक स्वागत है। नवरसों का आविष्कार, चित्रदर्शी शब्द शैली, शिल्पदर्शी रचना, सुगमता, छंद, लय को लेकर आई कविता के भीतर जो सौंदर्य, भाव और संदेश मिलता है वो हमें संक्षिप्त में बहुत कुछ कह देता है। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने कहा, आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हैं जो हमें बेहद पसंद है। आपने उन गीतों का जिक्र भी किया है और यकीनन यही गीत आज बजने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको बहुत ही सरल शब्दों में उन गीतों को डालकर आज की इबारत बनाई थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता के बारे में क्या कहें, कविता के बारे में सामान्य लंबाई में लिखी कविता होती है, बहुत ज्यादा लंबी हो जाए तो महाकाव्य कहलाती है, और न गा सको तो अतुकांत कविता कहलाती है, और कहीं ठिगनी रह जाती है तो हाइकू कही जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप बहुत दिनों बाद आई हैं और इतनी बड़ी और प्यारी सी थीम के साथ, और हमारा शामिल होना मुश्किल सा लगता है, क्यों, क्या बात है, आप इस कार्यक्रम में हमारे सफर में आज साथ नहीं चलेंगे, बताइएगा हमें। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़ने से अच्छा है आपके मधुर स्वर से ग्रहण कर लेना, क्योंकि इसमें भी एक भाव है जिसे पढ़कर नहीं सुनकर अपने मन में समाहित कर लिया जाएगा। बहुत सुंदर बात है, आप हमें सुन लीजिए, हम तो यही चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नई उम्र की नई फसल का गीत। और जब हम इबारत पढ़ रहे थे तो इन शब्दों का, इन पंक्तियों का जिक्र उसमें आया था और आपने भी पहचान लिया था कि यही गीत बजने वाला है। गीतकार है नीरज।

गीतकार नीरज की ये सुंदर कविता अभी आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम था नई उम्र की नई फसल। और हाँ, अब हम पढ़ते हैं हमारी इबारत का ये दूसरा भाग, क्योंकि आज आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारी इबारत बहुत लंबी है, तो हमने भी सोचा इसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ दिया जाए ताकि आपको बोझिल न लगे। तो अब तक जो आपने गीत सुना वो हमारी इबारत में आ चुका था, यानी नई उम्र की नई फसल का गीत आ गया ना। आगे हमने लिखा था कि प्रकृति का एक और उज्जवल, पवित्र और आध्यात्मिक रूप हमें मिलता है। यहाँ प्रकाश केवल प्रकाश नहीं है, वो आशा है, चेतना है, मंगल है और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। हाँ, ज्योति कलश है वो। समझ आया कुछ? कवि जब शब्दों से प्रकाश को एक कलश में भर देता है ना, उसे छलकने देता है, तब भाषा साधारण भाषा नहीं रह पाती, वो कविता बन जाती है। और फिर प्रकृति का वही रूप तो एक चित्रकार की कूची से बना हुआ लगता है, क्या चंचल, शीतल, निर्मल और कोमल। समझ गए आप? ये चार शब्द और चारों शब्दों में है पूरा संसार, चंचलता, शीतलता, निर्मलता और कोमलता। और हिंदी कविता की यही विशेषता है कि कभी कभी कुछ विशेषण ही पूरे दृश्य को जीवित कर देते हैं। और जब ये दृश्य इतना सुंदर हो जाए कि मन स्वयं से प्रश्न करे कि कौन चित्रकार है, तब हम समझते हैं कि प्रकृति को देखने के लिए केवल आंखें नहीं, कवि मन चाहिए। और कविता केवल फूल और प्रेम की बात नहीं करती, कविता जीवन को भी देखती है, उसके रास्तों को भी समझती है और मनुष्य को चलते रहने की प्रेरणा भी देती है। क्योंकि जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है, कभी साथ है, कभी अकेलापन है। तो कवि कहता है, रुकना नहीं है, चलते रहो, गाते रहो, जीवन के सफर को गीत बनाते रहो। गीत गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल भाई। ये गाते हुए गुनगुनाइए, जैसे कि आज सुरीले सफर में हम गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। और ये केवल गीत नहीं है बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। और

हर यात्रा चूंकि आसान नहीं होती, लेकिन अगर मन में गीत है, साथ में मुस्कान है, तो कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और हिंदी कविता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो गूढ़ दर्शन को भी सरल शब्दों में कह देती है। तो भारतीय काव्य परंपरा में प्रकृति केवल दृश्य नहीं परिवार है, धरती केवल मिट्टी नहीं माँ है, आकाश केवल विस्तार नहीं पिता है। जब यही सब भाव उतरते हैं तो क्या होता है, धरती कहीं पुकार के एक खूबसूरत कल्पना जन्म लेती है और यही कविता बन जाती है और कविता बनकर गीतों के रूप में ढलती भी है। जी तो आज की इबारत तो हमने आपके सामने रख दी है और वो श्रोता जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाते हैं वो इस इबारत को समझ चुके होंगे कि आज की इबारत क्या कहती है। जी हाँ, आज हमने कुछ ऐसे गीतों को चुना है जिनके शब्दों में कविता की सुगंध है। गीत तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जहाँ हिंदी कविता आ जाती है, हिंदी कविता लिखी गई है, कुछ खास गीतकार हैं जिन्होंने हिंदी कविताएं लिखी हैं, पंडित भरत व्यास, नीरज, रविंद्र जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्मी गीतों में हिंदी कविता को स्थान दिया है। गीतकार योगेश ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं। तो आज हमारे दो सवाल आपके लिए ये हैं कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, और हमारा दूसरा सवाल कि हिंदी के किस कवि की पंक्तियां, गीतकार की रचनाएं आपको सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है। केवल दो पंक्तियां आपको बतानी है। जैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता जो रश्मि रथी है ना, उसमें से ली गई जो पंक्तियां हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन को, ध्यान है ना, अंतिम संदेश के रूप में, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये पंक्तियां मुझे बेहद पसंद है। या कि ये भी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो आपको भी ऐसी कुछ पंक्तियां याद होंगी, चाहे वो फिल्मी गानों के रूप में या फिर साहित्य, जो हिंदी साहित्य आपने पढ़ा होगा अगर, या पढ़ने के शौकीन जो हमारे श्रोता हैं उन्हें कुछ पंक्तियां याद होंगी, उनका जिक्र कम से कम शब्दों में आपको करना है। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म भाभी की चूड़ियां का गीत। गीतकार है पंडित नरेंद्र शर्मा और संगीत दिया है सुधीर फड़के ने।

अभी आप सुन रहे थे ये सुंदर सी एक कविता ज्योति कलश छलके, और आपने देखा कि प्रभात और प्रकृति के सौंदर्य को शुद्ध हिंदी कविता के रूप में पंडित नरेंद्र शर्मा ने कितनी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। उन्होंने उषा, आकाश, बादल, धरती, फूल और प्रकाश को मतलब ऐसे काव्यात्मक बिंबों में पिरोया है कि ये गीत सुनने से अधिक तो लगता है जैसे एक सुंदर सी कविता हमने लिख डाली है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत अभी हमने आपको सुनवाया, और हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्यार एक साधना है जहां प्रतीक्षा का हर पल विरह के दर्द से अलग होता है। जैसे कोई कवि शब्दों को सहेज कर कविता बुनता है, वैसे ही प्रेमी प्रतीक्षा के हर पल को यादों को सजाता है। जब हवाएं चलती है, नदियां बहती है, फूल खिलते हैं, तो प्रकृति का प्रेम ही है जो व्यक्त हो रहा होता है। बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में मिलती है तो उठने वाली सौंधी खुशबू प्रकृति के प्रेम का ही संगीत है। प्यार एक ठहराव है, एक सुकून है जो इंसान को खुद से और पूरी से जोड़ देता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश में तो अलग अलग विषयों की रिमझिम रिमझिम बूंदों की बारिश सी कर दी है आपने। अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े सारगर्भित और बेहतरीन गीतों का गुलदस्ता सब बना दिया है। वाकई आपने हमारी इबारत को सही ढंग से समझा है, वरना तो हमारे श्रोता शिकायत ही कर रही है या कुछ हम क्या कहें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग रूपकों को सोच समझकर उनसे जुड़े जो सारगर्भित और बेहतरीन गीत हैं उनको हमने चुना, और उसी अर्थ में हमने आज की इबारत आपके लिए पेश की थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप बहुत समय बाद आ रही हैं। आज तो बहुत ही लंबा पोस्ट आया है, बहुत समय लगा होगा इसे लिखने में। छुट्टी से जाकर पहले इसे ही पोस्ट करूंगी और इस पर प्रोग्राम करूंगी, ऐसा आपने सोचा होगा, है ना मंदाकिनी जी? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। और हमें पता है आज हमें ये कार्यक्रम पेश करना है, तो हमने कल सोचा आपके लिए इस कार्यक्रम को और आज लेकर उपस्थित हो गए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे मन में कई भाव उत्पन्न होते हैं कि प्रेम, प्रतीक्षा, विरह, वेदना, खुशी, गम को कविता के रूप में कवि अपनी शैली में पिरोते हैं। प्रकृति से जोड़कर सुंदर शब्दों में विस्तार देता है, जिससे इन भावों को समझकर हम धारा में बहने लगते हैं और हमें संगीत जैसा प्रतीत होता है। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल जैसे जो गीत हैं वो इसी धारणा से लिखे गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का गद्यांश तो बहुत बड़ा है, प्रेम, समर्पण, कविता, प्रतीक्षा, अन्न, सपना आदि शब्दों को पिरोकर सजाया गया है, और आज का सुरीला सफर मिलते हैं आपसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कविता का सबसे सुंदर सत्य यही है कि वो प्रेम से शुरू होकर अंततः आत्मा तक पहुंचती है, और श्री कृष्ण इस यात्रा के सबसे सुंदर प्रतीक हैं। कृष्ण का प्रेम केवल पाने का नहीं, अपने प्रिय के अस्तित्व में स्वयं को विसर्जित कर देने का है। राधा की प्रतीक्षा में वही विरह है, वृंदावन की प्रकृति में वही माधुर्य, और गीता के शब्दों में वही जीवन को चलते रहने का संदेश। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम मिलन में जितना है उतना ही विरह में भी है, प्रकृति में जितना है उतना ही आत्मा में भी है। कभी वे बांसुरी बनकर मन को पुकारते हैं, कभी सारथी बनकर कर्म का रास्ता दिखाते हैं, और कभी भीतर से आवाज देते हैं चलते रहो, अपना धर्म निभाते रहो। बहुत सुंदर। तो आज के प्रश्न आपके सामने एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि आपकी पसंद का वो कौन सा फिल्मी गीत है जिसे आज आप केवल गीत नहीं बल्कि एक सुंदर कविता मानते हैं, जैसे कि आज कुछ गीत हमने चुने हैं सुंदर कविता के रूप में। और हमारा दूसरा सवाल था कि हिंदी के किस कवि की या किस गीतकार की रचना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और कौन सी पंक्तियां आपको आज भी याद है, जैसे हमें रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की जो पंक्तियां हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से चेतावनी दी थी दूर्योधन

धुन को अंतिम संदेश के रूप में कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आती हैं। और एक और जैसे जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये पंक्तियां आज भी हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हैं और ताउम्र रहेंगी। तो आपके जीवन में ऐसी कौन सी काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप नहीं भूल पाए हैं? सुरीला सफर के इस सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जसपाल सिंह की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये सुंदर सा काव्यात्मक गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने बहुत सारी कविताएं फिल्मी गीतों के रूप में हमें दी हैं।

जी हाँ, तो रविंद्र जैन का ये जो गीत है प्रकृति और जीवन के प्रति कितने सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसमें धरती को माँ, आकाश को पिता और पूरी सृष्टि को परिवार मानने का भाव है। यानी कितनी सुंदर कविता एक मनुष्य और प्रकृति के आत्मीय रिश्ते को लेकर रविंद्र जैन साहब ने लिखी। तभी तो इन गीतों को आज भी हम सुनना पसंद करते हैं, गुनगुनाना पसंद करते हैं, और यूं कहें कि ये गीत अमर से हो गए हैं, है ना? क्योंकि हिंदी कविता जो एक कवितामय गीत लिखे गए, जहां हमें कविता की सुगंध, कविता का रसास्वादन भी होता है। हमारे श्रोताओं ने अपने विचार हम तक पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने बहुत पावन प्रेम इबारत पेश की है। कृष्ण तो प्रेम के साकार रूप हैं, वे पराक्रम के प्रवर्तक भी हैं। उनकी गीता हमारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान बढ़ाती है। जन्माष्टमी पर आपने सभी को बधाई दी है। देखिए, हमने तो 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम में आपके लिए खास कार्यक्रम भी पेश किया था, जो कि श्री कृष्ण को समर्पित किया। हमने उन्हीं के भजन भक्तिपद आपके लिए पेश किए थे। हम उम्मीद करते हैं

0: कि हमारे श्रोताओं ने उस कार्यक्रम को सुना होगा। वहीं एक श्रोता लिखती है कि हमें स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, ये पंक्तियां जो कवि गोपालदास नीरज की हैं वो सबसे ज्यादा पसंद हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय इतनी सुंदर है कि उसको आज तक भूल नहीं पाते हैं मंदाकिनी जी। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी, ये पंक्तियां जो है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, है ना, वो कविता इन्हें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे स्कूल में पढ़ी जयशंकर प्रसाद की द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी की पंक्तियां याद आ रही हैं। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये इन्हें पंक्तियां बेहद पसंद आती है और इन्हें आज भी याद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तुम गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूँ, कोरा कागज था ये मन मेरा, ये पंक्तियां इन्हें बेहद अच्छी लगती है। वहीं एक श्रोता को चंदन सा वदन, ये पंक्तियां बेहद पसंद आती हैं फिल्मी गीत के रूप में। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम, ये पंक्तियां जो हैं गीत की इन्हें बेहद पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जो सवाल है उसका जवाब, यानी प्रश्न जो पहला था उसका जवाब दे रही हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ननी चिट्ठी जब दाना लेके चलती है, ये संदेश इन्हें बेहद पसंद आता है। और हमारे दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि कवि प्रदीप जी, सचिन दा, नीरज जी और भी बहुत से गीतकार हैं जिनके प्रेरणादायक गीत इनको पसंद आते हैं। बहुत सुंदर पसंद है हमारे श्रोताओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म नवरंग का ये सुंदर सा गीत आपको सुनवाते हैं, आशा भोंसले और मन्ना डे का गाया हुआ, पंडित भरत व्यास की बोल हैं। जी हाँ, पंडित भरत व्यास जिन्होंने न जाने कितने गीत हिंदी कविता के रूप में लिखे हैं और इसे संगीत में ढाला है सी रामचंद्र ने।
1: छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ तेरे।

ये कौन घुंघरू झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंछी चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका, लो तन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू भी कर दिया था और अभी भी लगातार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी कविता में रुचि रखते हैं, यानी आपके भीतर भी कविता बहती है किसी न किसी रूप में। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, ये तो हमने पढ़ दिया था, आप लिखते हैं कि आज की इबारत अलग अलग मोड़ के गीतों से आपने बुनी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गीतकार शैलेंद्र और पंडित प्रदीप जी के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, और पंडित प्रदीप जी की देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे फिल्म कादंबिनी का वो गाना जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा था आशा भोसले की आवाज में, अंबर की एक पाक सुराही, ये बहुत पसंद है। बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की कविता का अंश जो है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये पंक्तियां इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं श्रोता एक लिखती है कि मेह बरसने वाला है मेरी खिड़की में आजा तितली, महादेवी वर्मा जी की कविता है और इन कविताओं से ये प्रभावित हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ज्योति कलश छलके का मतलब है ज्योति का प्रकाश कर और बिखरे, अंधेरा गायब हो जाए अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये पंक्तियां इन्हें प्रभावित करती हैं। वहीं एक श्रोता को अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, गोपाल दास नीरज की पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता को महादेवी जी की कविता मैं चंदा तू चांदनी ये पंक्ति बहुत पसंद है। वहीं पंडित भर व्यास जी के बारे में एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी कविता के माध्यम से फिल्मी गानों को उन्होंने स्वर्णिम युग दिया है, रामराजी फिल्म का लता जी का गाया एक गाना पंडित भरत व्यास जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर है, सोजा सोजा यानी नींद के समय का ये अद्भुत गीत है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, प्रकृति सौंदर्य का जीवंत सुंदर चित्रण इस गाने में अनुपम है, ज्योति कलश छलके अंतिम अंतरा में ज्योति यशोदा घर की गैया सुनते ही बनता है, भाव विभोर कर देता है ये गाना, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अरे बस इतना ही। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं उतला, लाल लई देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, ये पंक्तियां इन्हें बहुत पसंद है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाभी की चूड़ियां का ज्योति कलश छलके ये कविता रूपी जो गीत है वो पसंद करते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि प्रिय विविध भारती परिवार, आपका ये कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पंक्तियां इन्हें पसंद आती हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आज का आपका विषय बहुत ही सुंदर है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि विशुद्ध हिंदी शब्दावली गीत से कार्यक्रम का श्री गणेश अति उत्तम शुभारंभ, श्रोतागण हर्षित फुल हो मुग्ध हो गए हैं, अरे वाह। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी आपको और समस्त श्रोता मित्रों को हम नमस्कार करते हैं, आज आप बहुत दिनों बाद उपस्थित हुई हैं। हो गए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कविता का आनंद लेते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल हैं, आवाज मुकेश की, और फिल्म का नाम सत्यम शिवम सुंदरम।

0: जी बहुत ही मधुर गीत अभी हमने सुना और कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच गए हैं। हमारे श्रोता कुछ श्रोता हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि क्या बात है आप कई दिनों के बाद सुरीला सफर पर आए हो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम छुपी हो कहां, हम आपकी आवाज सुनने को तड़प रहे हैं यहां। एक श्रोता लिखते हैं बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके श्रोता समूह वाला, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। हुए ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आप कार्यक्रम में आ गए हो तो और भी अच्छे हो गए हैं हम। अरे वाह क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि कविता की शक्ति को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। नहीं नहीं ये आपकी गलतफहमी है, हमने तो आपको कुछ नहीं समझाया बल्कि एक कार्यक्रम लेकर आपके साथ सुरीले सफर पर निकल पड़े हैं बस इतना ही ताकि जीवन में थोड़ा सा हम भी कवितामय हो जाए। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद सुरीला सफर लेकर आई हैं क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपके अनुपम सुंदर निबंध से चुने हुए कुछ गीत हमें आज बेहद पसंद आए हैं क्या बात है। हमारी इबारत को आज श्रोताओं ने निबंध कह दिया है, किसी ने कहा
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे, अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट, इन्होंने अकल लगाई रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो। हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शायद

0: शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

दोस्तों, कवि प्रदीप द्वारा कविता की शैली में लिखा गया यह गीत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, मानवता को आईना दिखाने वाली एक मार्मिक कविता के रूप में लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कवि। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 44वीं कड़ी।

0: बैरिस्टर जिन्ना द्वारा रखे गए मुद्दों में विसंगति दिखाते हुए इस्लाम धर्म के अध्येता और विचारक मौलाना रजा उल करीम ने कुछ लेख लिखे। कालांतर में उन बंगाली लेखों का संग्रह बंकिम चंद्र ओ मुसलमान समाज नाम से 1944 में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक के एक अध्याय में उन्होंने कहा,
1: हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साधारण बातों में भी मूर्ति पूजा का हवा खड़ा करके आम मुसलमानों का दैनिक जीवन दूषित करते हैं। माता पिता के चरणों को हाथ से छूकर उनके प्रति भक्ति भाव दिखाना ही मूर्ति पूजा है। श्रद्धा के पात्र व्यक्तियों के सामने भक्ति भाव से नतमस्तक हों तो वो भी मूर्ति पूजा ही है। सजावट के लिए कमरे में कोई तस्वीर लगाना

0: भी मूर्ति पूजा ही है, क्या ऐसा मानना चाहिए? ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति वंदे मातरम जैसे अत्यंत निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को सांप्रदायिक गीत कहते हैं, परंतु जिनके पास उदारवादी दृष्टिकोण है उन्हें वंदे मातरम गीत को सम्यक दृष्टि से ही देखना चाहिए। वंदे मातरम जैसे सर्वांग सुंदर गीत का मूर्ति पूजक कहकर जो विरोध होता है उसका उद्देश्य पवित्र तो है ही नहीं, इसलिए इस गीत की भाषा तो ऊपरी बहाना है। उसका असली कारण राजनीतिक ही है। उसे देखने के लिए उदार दृष्टि, मुक्त विचारधारा और चिंतनशीलता की आवश्यकता है, और इन्हीं बातों के अभाव के कारण इस पर किसी ने भी अंतर्मुख होकर विचार नहीं किया है।
1: रजाउल करीम ने इस प्रकार वंदे मातरम पर लगे इन आक्षेपों को तर्कसंगत ढंग से खंडित किया।
2: मुस्लिम समाज की वंदे मातरम के प्रति इस भूमिका के विरोध में सबसे प्रखर भूमिका हिंदू महासभा ने निभाई। स्वतंत्रता वीर सावरकर की रत्नागिरी में नजरबंदी से मुक्ति के बाद हिंदू महासभा की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने लोकशाही स्वराज्य पक्ष शुरू किया था। उस दल के सहयोग से हिंदू महासभा ने वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जाए, इसलिए वंदे मातरम दिवस मनाकर आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग का वंदे मातरम गीत के प्रति जो विरोध था उसे तोड़ने के लिए 26 अक्टूबर 1937 का दिन वंदे मातरम दिन के रूप में मनाने का निश्चय किया गया।
1: उसी समय मैडम कामा ने स्टुटगार्ट में 1907 में फहराया हुआ वंदे मातरम शब्द लिखा हुआ भारत का ध्वज पेरिस से सरदार सिंह राणा के पास से केसरी के तत्कालीन संपादक और लोकमान्य तिलक के नाती गवी केतकर के पास 22 अक्टूबर को पहुंचा। वंदे मातरम दिन के अवसर पर पुणे में पहुंचे इस ध्वज की बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद हुई सभा में स्वतंत्रता वीर सावरकर और सेनापति बापट के भाषण हुए।
2: जैसे मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन थी, वैसे ही हिंदू महासभा को हिंदुओं का प्रतिनिधि दल माना जाने लगा। 1937 से 1939 के काल में मुस्लिम लीग के वर्चस्व के कारण बंगाली हिंदुओं पर एक प्रकार का दबाव और आतंक छाने लगा। कांग्रेस की दोहरी नीति के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बंगाल के नेता हिंदू महासभा की ओर खींचे चले गए और बंगाल में हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगा। 1938 में नागपुर में हुए हिंदू महासभा के 20वें अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में सावरकर ने शुरुआत में ही हिंदू राष्ट्र और वंदे मातरम की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ ऐसा आवाहन किया। संपूर्ण वंदे मातरम गायन के साथ ही उनके भाषण का समापन हुआ। ये गायन नागपुर के गायक पंडित विनायक अंभईकर ने खंबावती राग में किया था। इस घटना के समय अंभईकर मात्र 26 वर्ष के थे। बचपन से ही वे वंदे मातरम के प्रेम से ओतप्रोत थे। 1926 में 14 वर्ष की आयु में नागपुर के बैरिस्टर मोरोपंत अभ्यंकर के घर गांधी जी के सामने छोटे विनायक ने संपूर्ण मात्र 17 वर्ष की आयु में संगीत सुधाकर ये संगीत की प्रतिष्ठित उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। स्कूल के दिनों में जॉर्ज नृपा गावे सद्भावे वंदुनिया पदा ये पंचम जॉर्ज की कविता गाने वाला विनायक आगे चलकर वंदे मातरम का कट्टर समर्थक बन गया।
1: 1938 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन की तरह ही सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 के हरिपुरा में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया था। हिंदू महासभा और कांग्रेस जैसी सभी विचारधाराओं के अलग अलग दलों के कार्यक्रमों में उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए आग्रहपूर्वक

आमंत्रित किया जाता था। खनकदार फिर भी विलक्षण मधुर आवाज, अभ्यासपूर्ण और भावरसपूर्ण गायकी के कारण उनका वंदे मातरम लोकप्रिय हो गया।

0: 1938-39 का कालखंड और भी अधिक संघर्षमय बन गया था। दिनांक 7 फरवरी 1939 को आंध्र प्रदेश के चपलमुंडा के कारागार में अनेक युवा आंदोलनकारियों को रखा गया था। शाम के समय इन राजबंदियों ने भजन के साथ वंदे मातरम गाना शुरू किया। जेल अधिकारी हॉलिंग्स ने वंदे मातरम गाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, फिर भी रामचंद्र राव नामक कैदी वंदे मातरम गाता ही रहा। जेल अधिकारियों ने उसे 17 कोड़ों की सजा दी। उस समय भी रामचंद्र राव वंदे मातरम के नारे लगाते ही रहे। आखिर वार्डन ने ही ये पिटाई रुकवाई। खून से लथपथ रामचंद्र राव ने आधी बेहोशी की हालत में भी वंदे मातरम का उच्चारण बंद नहीं किया था। उन्नीस के दिसंबर में पंढरपुर में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में स्वतंत्रता वीर सावरकर ने रामचंद्र राव को गौरवान्वित करते हुए उन्हें वंदे मातरम रामचंद्र राव की उपाधि देने की घोषणा की। आगे चलकर रामचंद्र राव वंदे मातरम रामचंद्र राव इसी नाम से पहचाने जाने लगे।
1: देश भर में घट रही घटनाओं की पृष्ठभूमि में आशा की किरणें राजनीतिक स्तर पर दिखने लगीं। इन सब का परिणाम आसपास की परिस्थिति पर खुद बंगाल में भी होता रहा। अप्रैल 1940 में कलकत्ता महानगर पालिका के वरिष्ठ सदस्यों के चुनाव में नगर पालिका प्रशासन में यूरोपीय प्रशासकों के एकाधिकार तोड़ने के लिए सुभाष चंद्र के भाई शरद चंद्र बोस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। नगर पालिका स्तर पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी विश्वास के आधार पर हुआ यह संपूर्ण देश भर में एकमात्र गठबंधन था।
0: दिसंबर 1940 में मुस्लिम लीग के एक मंत्री ए के फजलुल हक ने भी संयुक्त मोर्चे का प्रयास शुरू किया। जिस बंगाल में मुस्लिम लीग का पौधा उगा और फला फूला, उसी बंगाल में कुछ सकारात्मक प्रयास भी किए गए। हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त सरकार कभी भी टिक नहीं पाएगी, इस तरह के अंग्रेजों के झूठे प्रचार को इन प्रयासों ने करारा जवाब दिया। सुभाष चंद्र के भाई और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष शरद चंद्र बोस, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोर्चा सरकार स्थापित करने का समर्थन किया। इस संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री फजलुल हक बने।

विशेष बात यह है कि इस मोर्चा सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के समय वंदे मातरम गीत गाने का कभी भी विरोध नहीं किया। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 44वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV. मुझे

0: यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
5: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गांवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
2: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य

0: मध्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में

भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्करूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार

0: चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। गीत रचना शकील बदायूं ने की और संगीत नौशाद साहिब का।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया फिल्म मदर इंडिया का गीत अभी आपने सुना। ये स्वर है आशा भोसले और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम है नया दौर, शब्द साहिर लुधियानवी के और तर्ज ओपी नैयर की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये है अगली पेशकश। एस डी बर्मन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की बोल, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम है प्यासा।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नेहा चौहान,
1: जो गनफो ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए। तो हम वहाँ पे गए और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी।
0: एक जीवन जो निशानेबाजी को समर्पित है।
1: स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी,
0: जिसने देश को दिए कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जिनकी निगाहें हैं गोल्ड मेडल पर।
1: गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालर इवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, दो बार ओलंपिक खेल चुके हैं, और अभी जो धनुष श्रीकांत है जो दो बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंदाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8।
0: एक मुलाकात द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से मैटिनी शो 5 सितंबर सुबह 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है 2 आंखें 12 हाथ। शब्दकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार वसंत देसाई हैं।

0: टेलीविजन के जाने माने नाम, जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म CID से स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, गीत रचना जानिसार अख्तर की और धुन OP नैयर की है।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों सहेलियों नमस्कार, हम आ गए आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर। हेलो सहेली, मैं हूं आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक। इंतजार कर रही हूं आपके फोन कॉल का। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: हम नीता मिश्रा बोल रहे हैं
0: जी। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: जी हम रहते थे लखीमपुर खीरी में, लेकिन इस समय अपने भाई के आए हैं, शाहजहानपुर पास में ही है।
0: भाई के यहाँ आए हैं, रक्षाबंधन मनाने आए हैं आप?
1: जी जी
0: जी, बताइए नीता जी अपने बारे में बताइए।
1: हमारे 6 भाई हैं, तो भाई बात सभी भाई तो पहुँच नहीं सकते हमारे घर, इसलिए हम यहाँ पर आया था कि सारे भाइयों के राखी बन जाती है, रचना हो जाता है, इसलिए ज्यादातर हम ही आते हैं यहाँ पर।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छे हैं। आपके जीवन में अभी
1: हाँ।
0: खुशियों के दिन आ रहे हैं जब हम भाई के घर जाके रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और आज आपका पहला फोन कॉल भी लग गया है, तो इसमें यानी सोने पे सुहागा हो गया है ना। अपने बारे में बताइए।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: जी।
1: मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं हम,
0: जी
1: और मेरी ननद है, उनकी शादी हो चुकी है। फिलहाल हम 3 लोग रहते हैं घर पे।
0: जी और बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनना चाहते हैं काजल फिल्म का गाना है, मेरे भैया मेरी चंदा मेरे अनमोल रतन।
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली, बड़ोदा
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: से शारदा बेन नागरेचा ने।
0: बड़ौदा से शारदा बेन बात कर रही है। बताइए
1: हाँ, बहुत
0: शारदा बेन, आप क्या करती हैं?
1: सारी एक्टिविटी करती हूँ, गाना गाती हूँ, म्यूजिक का बहुत शौक है, रसोई का, और एक्टिविटी में फ्लावर बनाती हूँ, तेज
0: अरे वाह वाह।
1: पत्ते में से, पिस्ता में से, और जो
0: यानी
1: आचार के गुंदे आते हैं ना, गुंदा अथाना, वो भी ईसा वाला त्रोफान, लीला नारियल आता है ना, लीला नारियल ऊपर वाला ईसा,
0: जी
1: उसका फ्लावर बनाता है, उसमें कलर पुरते हैं।
0: वाह वाह वाह। यानी जो हम लोग जो इस्तेमाल करके जो बची हुई चीजें होती है जिसे हम फेंकते हैं, उन्हें आप फेंकती
1: हाँ,
0: नहीं है, उन चीजों से सुंदर सुंदर आप फ्लावर पॉट बनाती हैं, फूल बनाती हैं, है ना?
1: और होलसेल मैडम राखी आते हैं, राखी के सब सामान मैं रख देती हूँ, इसका भी मैं इस्तेमाल करती हूँ।
0: क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि
1: हाँ,
0: जिन
1: हाँ
0: चीजों से हम कुछ और भी क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: गाना गाना भजन कीर्तन सब आता है मैडम।
0: जी, तो कुछ गाकर सुनाइए।
1: कम

0: કરે, ગોપીઓ ના ઘર માં જઈને લીલાયો કરે, શ્યામ આવીને મારી મઠુકી ખોળે.
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर आपकी आवाज है और इतनी सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाती रहिए और आप जो क्रिएटिव काम करती है ना वो भी करती रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए. चलिए बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं.
0: नन्हे मुन्हे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है,
1: बहुत सुंदर गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से बोल रही हूँ, शहनाज अख्तर।
0: शहनाज जी नमस्ते, क्या हाल चाल है?
1: बस बहुत बढ़िया है।
0: और बताइए आप क्या करती हैं?
1: होम गृहिणी हूँ, घर पर ही रहती हूँ
0: जी।
1: 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटी हैं, एक बेटा है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो हर साल हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाते हैं, तो पोषण को लेकर आपके जीवन में क्या महत्व है, यानी कि आप बच्चों को पोषक भोजन किस तरह से देती है, जरा बताइए ना।
1: बच्चों को सुबह में जैसे हलवा नाश्ते में और जूस वगैरह।
0: ये आप बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: पोषण को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ मैडम कि पोषण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जिंदगी में जान है तो जहान है, तो हम अपने स्वास्थ्य का हम खुद ही ध्यान रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं आज?
1: जी मैं मैडम, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, खासकर तो मैं अपने हस्बैंड के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, अपने पति के लिए ये गाना समर्पित है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी मैं रंजना कुमारी, बिहार शरीफ मगरा, मेरा गांव का नाम हुआ जी। मैं नालंदा जिला से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, बताइए रंजना जी आप क्या करती हैं?
1: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, ऐसा होता है ना कि सावन भादों का महीना जैसे ही आता है तो हमारे जीवन में उमंग और उत्साह के दिन आने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार होते हैं। त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो आप कौन सी मिठाइयाँ बनाती हैं?
1: जी हम लोग के यहाँ ये घर में ही ठकुरबाड़ी बना हुआ, कृष्ण भगवान का ये मंदिर बना हुआ है घर में,
0: जी।
1: तो उसमें हम लोग का 56 भोग लगता है। उसमें से कुछ बाहर से मिठाइयाँ आती है दुकान से, कुछ घर में भी जैसे हलवा वगैरह होता है, मूंग का हलवा, उड़द का हलवा, वही लगता है भगवान में भोग में जन्माष्टमी के दिन में। तो उस दिन भी हम लोग के यहाँ बहुत उत्साह होगा, पूरे घर सब मिल के जन्माष्टमी मनाते हैं हम लोग।
0: तो आजकल ऐसे हो रहा है कि लोग अपनी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं, चीनी का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ करती हैं कि चीनी के बजाय उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है?
1: जी जी हम लोग के हलवा में तो गुड़ ही पड़ता है, चीनी कम गुड़, और ये हम लोग मीठा बोलते हैं, गुड़ से पहले मीठा बनता है
0: जी।
1: जी। जो गन्ने का रस जब निकलता है ना, तो पहले मीठा बनता है,
0: ओहो
1: उसके बाद गुड़ गुड़ बनता है। तो वो जो मीठा है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग मीठा।
0: जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक है और पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। आपसे बात
1: जी
0: करके बहुत अच्छा लगा। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: ये छोटी बहू फिल्म का गाना है, कन्हैया तू किसको कहेगा मैया।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं रुचि भट्ट बोल रही हूँ, इंदौर से, मध्य प्रदेश से।
0: जी रुचि जी, नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: बताइए अपने बारे में बताइए।
1: मैं इंदौर से रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। और मैं पहले बिजनेस में हुआ करती थी, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइम बिजनेस में, और अभी कुछ सालों से लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
0: जी, यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी देखिए, इंदौर की जब भी बात चलती है तो खान पान आंखों के सामने आ जाता है, तो किस तरह के खाने आप एंजॉय करती हैं या बनाती हैं घर में?
1: इंदौर के पानी में ही स्वाद है ऐसा कहा जाता है, और मुझे भी, जैसे मैं रह रही हूँ और यहाँ के खाने का लुत्फ उठा रही हूँ, तो वाकई स्वाद है। और चाहे वो आप चाट पकौड़ी ले लें या किसी भी किस्म का स्वाद आप लें, चाहे आप सदर में भुट्टे का किस खाने चले जाएं, या हर तरीके के खान पान में स्वाद है।
0: जी, और अभी यानी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं 1 से 7 सितंबर तक, तो पोषण को आप
1: जी,
0: कितना महत्व देती हैं?
1: मेरी समझ से पोषण, मेरे जैसे शरीर के लिए पोषण का काम जो खान पान से मिलता है, उसको मैं चाहूंगी कि मैं इंदौर के खान पान से जोड़ूं। यहाँ पे जैसा कि आपने पूछा कि चलन क्या है खाने का, तो अभी चलन भी बदल रहा है, मिलेट्स को ज्यादा शामिल किया जा रहा है, चाहे वो चाट पकौड़ी हो या किसी भी टाइप की रेसिपीज हो उसमें, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है यहाँ के लोग, इसलिए उस चीज के ऊपर भी फोकस बढ़ रहा है और लोगों का खानपान भी बदल रहा है उसी के हिसाब से।
0: जी, मिलेट्स को बहुत महत्व देना चाहिए, ये जैसे ज्वार का आटा है, फिर बाजरा है, यानी मैदे को हमें अवॉइड करना है और मिलेट्स को महत्व देना है। साथ ही इंदौर की एक और खासियत है स्वच्छता, साफ सफाई, तो ये क्या संदेश आप लोगों को देना चाहेंगी साफ सफाई को लेकर?
1: मेरी तरफ से एक ही, अगर घर से शुरुआत करेंगे, गीला कचरा, सूखा कचरा और की शुरुआत से आदत डालेंगे, तो हर घर और हर शहर इंदौर जैसा ही स्वच्छ बन सकता है, और हम कर सकते हैं। शुरुआत हमें घर से ही करनी है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही, और घर से तो हम लोग शुरुआत करते हैं, पर सार्वजनिक स्थल पर जाकर हम थोड़े से ना लापरवाह हो जाते हैं, इधर उधर चीजें फेंकने लगते हैं।
1: जब हम सार्वजनिक स्तर पर बात करते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना ज्यादा जरूरी लगता है मुझे। और सेल्फ डिसिप्लिन एक माँ, एक लेडी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी तो उसकी फैमिली भी सेल्फ डिसिप्लिन रहेगी, और एक एक अच्छा सोसाइटी और एक अच्छा साफ सुथरा शहर हम हर जगह, हर पूरे देश में बना सकते हैं।
0: जी, यानी कि बच्चों के संग जब हम बाहर जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की आदत लगाएं कि बस चॉकलेट खाया के रैपर नहीं फेंकना है, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना है। तो बच्चे अगर बचपन से ही इन आदतों को अपनाते हैं तो बड़े होके एक बहुत अच्छे नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने।
0: जी बताइए रुचि जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं कारवां फिल्म का पिया तू अब तो आ जा।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते। बताइए, हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: सुचित्रा पंडित हूँ, उज्जैन से बात कर रही हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश।
0: जी सुचित्रा जी, बताइए क्या करती हैं
1: जी,
0: आप?
1: मैं संगीत की कक्षाएं भी लेती हूँ, जॉब भी किया हुआ है। अभी मेरी उम्र 69 है और बचपन से ही विविध भारती सुन रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: मेरे यहाँ रोज दिन भर रेडियो चलता रहता है।
0: क्या बात है। और आपने जैसे
1: जी
0: बताया कि आपकी उम्र 69 साल की है, पर आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि कोई 20-25 साल की युवती हमसे बात कर रही
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा लग रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए
0: नहीं,
1: मैडम।
0: और आपने कहा है कि आप संगीत की शिक्षा देती हैं, तो कुछ
1: जी
0: सुनाइए
1: मैम,
0: आप।

0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत,
1: सडनली तो याद आ गया वो गा दिया मैडम, कोई पहले से तैयारी नहीं थी
0: नहीं नहीं
1: जी
0: बहुत सुंदर आपकी आवाज भी है और बहुत सुर में गाती हैं आप। और जैसे
1: जी
0: आपने कहा कि आप
1: धन्यवाद
0: संगीत की शिक्षा देती हैं, तो
1: जी जी
0: किस उम्र के बच्चे आपसे शिक्षा लेते हैं, ने कुछ ग्रहण?
1: मैं प्रायः जो दूसरी पास हो ऐसे बच्चों से शुरू करती हूँ, ताकि वो थोड़ा कम, जिनको अक्षर ज्ञान हो तब से शुरू करती हूँ। अक्सर बचपन से ऐसा लगता है लोगों को कि छोटेपन से एकदम से बहुत बड़े कुछ गायक बन जाए, वो संभव नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें बच्चों में आती हैं, पहले उनका अपने को रुचि किस चीज में है ये देखना बहुत जरूरी रहता है। आजकल क्या हो गया, ये रियलिटी शोज के कारण ना हर पेरेंट को लगता है कि हमारा बच्चा एकदम स्टेज पे जाके और गाने लगे। कुछ चीजें तो जैसे बोलते हैं ना इनहेरेंट होती हैं, आपके अंदर वो ताल और सुर होना चाहिए, तभी वो उभर के बाहर आ सकता है
0: और आप रियाज के
1: ऐसा।
0: माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को तराशते हैं।
1: जी।
0: ये आपने बहुत सही बात कही है, ये एक संदेश है। और संगीत को
1: हाँ
0: लेकर आप छोटे बच्चों को या पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ यही देना चाहूंगी मैं कि पहले ना उनकी रुचि किस चीज में है वो देखिए। पहले आप जबरदस्ती, अगर किसी को ड्राइंग में रुचि है तो उसे ड्राइंग करवाइए, उसे अगर किसी संगीत में रुचि है तो कराइए, या उसे स्पोर्ट्स में कोई रुचि है तो वो स्पोर्ट्स उसे करवाना चाहिए। मतलब आपकी इच्छा है कि वो अच्छा गायक बन जाए तो वो संभव नहीं है, उसमें वो चीज अंदर होनी भी चाहिए ना, ईश्वर प्रदत्त भी कुछ चीजें होती हैं।
0: पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं बच्चों पर लादना नहीं चाहिए।
1: हाँ थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तभी बच्चा आगे जाकर के कुछ कर सकता है। तो दौड़ में हम ना दौड़े, वास्तव में अगर कलाकार बनाना है तो उसके साथ धैर्य, साधना, ईश्वर कृपा, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं ऐसा मुझे लगता है
0: जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। और
1: जी।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी का अब के बरस भेजो भैया को बाबुल, अभी सावन भी है
0: जी
1: और बहुत ही प्यारा, आशा जी ने बहुत अच्छा गाया है वो गीत, वो बहुत मेरे दिल के करीब है वो गाना
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, बताइए
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: आलिया भानो बात कर रही हूँ, वडोदरा गुजरात से। मैडम
0: जी आलिया जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे ही रहती हूँ। आप सोनाली पाठक बोल रही है ना?
0: जी हाँ, मैं सोनाली बात कर रही हूँ।
1: मुझे आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा,
0: जी
1: बहुत
0: हाँ
1: खुशी हो रही है।
0: जी, हमें भी बहुत खुशी हो रही है, आपका फोन लग गया है। और चलिए बताइए, अपनी रुचियां क्या हैं आपकी, कौन से शौक हैं आपके?
1: मुझे रेडियो सुनने का बहुत अच्छा लगता है, गाने
0: जी
1: सुनने का।
0: जी
1: और मुझे ना सैटरडे के सितारे, आज के मेहमान, ये सब इंटरव्यू वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: एक रिश्ता फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ। तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल ही तो है। और दीदी, मुझे पूजा दीदी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, और
0: जी
1: सलमा दीदी की आवाज भी।
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, साइबर
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: रानी ने फोन लगाया मैम।
0: जी साइबर रानी, कहाँ से फोन लगाया है आपने?
1: सहारनपुर से फोन लगाया। जी
0: जी साइबर रानी जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ,
0: क्या पढ़ रही हैं आप?
1: बीए कर रही हूँ।
0: तो आपके कुछ भविष्य के कुछ प्लान्स हैं कि बीए के बाद में क्या करना चाहती हैं?
1: अपने खुद के लिए टीचर बनना सोचती हूँ।
0: टीचर बनना चाहती हैं?
1: जी मैम।
0: जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हर किसी का सपना होता है और आपका सपना है टीचर बनना। तो आप यानी टीचर क्यों बनना चाहती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा?
1: जी मैम, मेरे को अच्छा लगता है। जी
0: जी हाँ, देखिए आप
1: हाँ,
0: टीचर बनना चाहती हैं तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप इस कॉल के माध्यम से?
1: बच्चों का मैं कहना चाहूंगी, जिसके भी बच्चे हैं अपने अच्छे बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाइए, आगे आने वाले भविष्य में उनकी जिंदगी अच्छी बने।
0: जी, तो चलिए बताइए कौन सा। जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है।
1: उज्जैन से अनीता जोशी ने।
0: अनीता जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया, महाकाल का बाबा कृपा है।
0: जी बताइए, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी, और आज जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाती हैं?
1: हम कान्हा जी का अभिषेक करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, झूला झुलाते हैं, उनको माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं।
0: जी अच्छा, अपने
1: सब
0: शहर के बारे में बताइए।
1: जी, हमारे शहर में कृष्ण भगवान, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी यहाँ पे। सांदीपनि आश्रम है उनका।
0: जी जय
1: महाकाल का मंदिर भी है, 12 ज्योतिर्लिंग में आता है वो।
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: संजोग फिल्म का, यशोदा का नंदलाला।
0: जी, संजोग फिल्म का गीत आपको सुनवाते
1: जी
0: हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुहाना बानो बात कर रही हूँ, गुजरात अहमदाबाद से।
0: जी बताइए, आप क्या करती हैं?
1: बेटा मैं घर भी रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा बहुत कभी टाइम मिला है तो सिलाई विलाई कर लेती हूँ कपड़ों में।

0: सखियों, आपसे की गई बातें, आपके अनुभव दिल को छू गए। आज हमसे जुड़ने वाली सभी सखियों को धन्यवाद। और वे सखियां जिनकी कॉल नहीं लग पाई, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाए। साथ ही जिन सखियों ने आज हमसे बात की, उनसे ये करबद्ध अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी मौका मिल सके। और हमारे पुरुष श्रोताओं से अनुरोध है कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वे कॉल न करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले प्रोग्राम में। हमारी सखियों को बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर इस तरह से हैं, 400-24662, यानी 400-24662। दूसरा नंबर है 28670288, यानी 28670288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है किरण बंग, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। दीजिए आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
1: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है, जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि कहीं मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ रौनक बनी रहती है, एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चिढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता, फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

तो जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती। और दीदी भी मुस्कुराकर

कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ? तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ। कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो। कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़। शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बंबई से।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने, किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजा जी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। स्नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो

हंसी में उलझी रही। माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पांव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया। ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और दो घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, एक चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई। फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी, खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया। शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी। घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा, ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदलकर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको या भैया से लड़ाई हो गई? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते पर हर जगह कोई न कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते, वो उपेक्षित सा महसूस करती। स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह, कितनी सारी योजनाएं बना डाली। अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो गया। किचन में जाकर ढेर सारे प्याज काट डाले। सास ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे प्याज? आंखें नाक पोछते हुए इतना ही कहा, हाँ आज सोचा आलू दो प्याजा बना दूं।

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना है, वो कैसे जा सकती है। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश

पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताए स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती। सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियां संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सिंहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं, क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी। कह देगी, रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 5 बजने को है। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

शाम की रोशनी में जब धूप भी मुस्कुराती है, हर धड़कन में एक उम्मीद सी जग जाती है। चलो आज फिर से खुद को थोड़ा जी लेते हैं, दोस्ती के बहाने जिंदगी को फिर से पी लेते हैं, क्योंकि कुछ चेहरे शाम ढलते ही याद आते हैं जिनसे दिल ही नहीं रूह भी मुस्कुराते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिंपल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो दोस्तों, आज का दिन जो है वो बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जिसका इंतज़ार भगवान कृष्ण के भक्त पूरे वर्ष करते हैं। एक ऐसा पर्व जिसमें भक्ति है, उल्लास है, संगीत है, झांकियां हैं, मटकी की खनक है और कान्हा की मुस्कान की मिठास भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव। भगवान कृष्ण को हम कई रूपों में जानते हैं, कहीं वे नटखट नंदलाल हैं तो कहीं यशोदा मैया के लाडले कान्हा, कहीं राधा के प्रियतम हैं तो कहीं अर्जुन के सारथी और कहीं महाभारत के महान मार्गदर्शक भी। श्रोताओं, श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी आज ही के दिन हुआ था और धार्मिक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ हुआ। उस समय अत्याचारी कंस का शासन था और कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी की आठवीं संतान ही उसके अंत का कारण बनेगी और इसी भय के कारण उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। और फिर आया वो पावन क्षण। आधी रात का समय था, चारों ओर अंधकार था, लेकिन उसी अंधकार के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मान्यता ये है कि उनके जन्म के साथ ही जैसे उम्मीद की एक नई किरण ने जन्म लिया, अन्याय के बीच न्याय की, निराशा के बीच आशा की और अधर्म के बीच धर्म की। दोस्तों, वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर गोकुल पहुंचे और जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया के स्नेह में हुआ था और यहीं से शुरू होती है कान्हा की वो प्यारी सी बाल लीलाएं जिनकी कहानियां आज भी हर घर में सुनाई जाती हैं। कभी माखन चुराना, कभी गोपियों को परेशान करना, कभी अपनी मीठी मुस्कान से सबका मन जीत लेना और कभी अपनी बांसुरी की धुन से पूरे गोकुल को मोहित कर देना। शायद यही कारण है कि श्री कृष्ण केवल एक आराध्य नहीं बल्कि लोगों के दिलों से जुड़े हुए भगवान हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का उत्सव केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इस दिन मंदिरों और घरों में विशेष सजावट भी की जाती है। भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप में झांकी सजाई जाती है और पालने में लड्डू गोपाल को विराजमान किया जाता है। कहीं फूलों से सुंदर सजावट होती है तो कहीं कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित झांकियाँ बनाई जाती हैं। बच्चे कृष्ण और राधा का रूप धारण करते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन होते हैं और आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं दोस्तों। कहीं इसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है तो कहीं दही हांडी का उत्सव विशेष आकर्षण इसमें होता है। दोस्तों, दही हांडी की परंपरा हमें कृष्ण के बचपन की उन शरारतों की याद दिलाती है जब कान्हा अपने सखाओं के साथ मिलकर ऊंचाई पर लटके मटकी से माखन निकालने की कोशिश करते थे। आज भी दही हांडी के अवसर पर लोग मिलकर एक मानव पिरामिड बनाते हैं और मटके फोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस त्यौहार में जो है एक बहुत ही सुंदर संदेश छिपा हुआ है कि जब हम मिलकर प्रयास करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण की सबसे बड़ी पहचान केवल उनकी बाल लीलाएं नहीं है, उनका जीवन

हमें और भी कई महत्वपूर्ण संदेश देता है दोस्तों। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वो आज भी हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमें कर्म का महत्व समझाया। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए भी श्री कृष्ण का जीवन बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। जब जीवन में असफलता मिले तो निराश होकर रुकना नहीं है, जब रास्ता कठिन हो तो हिम्मत नहीं हारनी है, और जब कोई चुनौती सामने आए तो उससे भागना नहीं है। सबसे ज़रूरी अपने कर्म पर विश्वास रखना है। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और विवेक कितना महत्वपूर्ण है। केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना भी बेहद ज़रूरी है। कृष्ण की मुस्कान हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी हमें सकारात्मक बने रहना चाहिए। उनकी बांसुरी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम और मधुरता बनाए रखनी चाहिए। उनका गीता संदेश हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए। इस जन्माष्टमी हम सभी केवल कान्हा की पूजा ही नहीं करें दोस्तों, बल्कि उनके संदेश को अपने जीवन में भी आप उतारने का प्रयास करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पूरी लगन से पढ़ाई करें, अगर युवा हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, और अगर किसी काम में आपको असफलता मिली है तो उसे अपना अंत नहीं समझें बल्कि एक नई शुरुआत माने, और अगर जीवन में किसी से मतभेद हो भी जाए तो प्रेम और संवाद का रास्ता चुनें, क्योंकि श्री कृष्ण का जीवन हमें यही तो सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना हम किस तरह करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व हमें एक और खूबसूरत संदेश देता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते को आसान समझकर मत चुनिए। सही रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वही रास्ता हमें सच्ची सफलता और संदेश देता है। इसलिए इस जन्माष्टमी अपने भीतर के डर को दूर करें, अपनी अच्छाइयों को मजबूत करें, और जीवन में प्रेम, करुणा, सत्य और कर्म का रास्ता अपनाएं। तो लीजिए, आपको इसी के साथ ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में, और सुनवाते हैं गोविंदा का ये प्यारा गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: तो चलिए दोस्तों, अब हमारे युवाणी सफर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अगली चर्चा की। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि एक घना जंगल है, चारों तरफ पेड़ों की हरियाली है, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है और दूर कहीं हिरणों का झुंड दिखाई दे रहा है और किसी पेड़ पर बंदर उछल कूद कर रहे हैं। कितना खूबसूरत दृश्य है ना। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर ये जंगल ही नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे और वन्य जीव धीरे धीरे हमारे बीच से गायब होने लगेंगे, तो क्या हमारी धरती उतनी ही खूबसूरत रह पाएगी? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वन्य जीव यानी केवल शेर, बाघ, हाथी या हिरण ही नहीं, हमारे आसपास रहने वाले पक्षी, सरीसृप, कीट पतंगे और अनेक छोटे बड़े जीव भी हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति में हर जीव की अपनी एक भूमिका होती है। कोई पौधों के परागण में मदद करता है, तो कोई बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है, तो कोई दूसरे जीवों की संख्या को भी नियंत्रित करता है। यानी जंगल में दिखाई देने वाला एक छोटा सा जीव भी प्रकृति के बड़े तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझिए दोस्तों। अगर किसी जंगल से अचानक कोई एक महत्वपूर्ण प्रजाति कम हो जाए, तो उसका असर केवल उसी प्रजाति तक सीमित नहीं रहता, उसके भोजन, शिकारी और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, और यही तो पर्यावरणीय संतुलन होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज वन्य जीवों के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जंगलों का कम होना, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार जैसी गतिविधियां वन्य जीवों के लिए जो है परेशानी पैदा करती है। और ऐसे में सवाल उठता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या वन्य जीव संरक्षण की जिम्मेदारी केवल सरकार, वन विभाग और वन्य जीव विशेषज्ञों की है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण में हमारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहला कदम है जागरूकता। जब हमें पता होगा कि प्रकृति और वन्य जीव हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं, तभी हम उनके संरक्षण के लिए सही कदम उठा पाएंगे। हम अपने आसपास पेड़ पौधों को बचा सकते हैं, पानी और बिजली की बचत कर सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं और अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। अगर हम जंगल या किसी प्राकृतिक क्षेत्र में घूमने जाएं, तो वहां पर आपको कचरा नहीं फैलाना है। वन्य जीवों को परेशान नहीं करें और उन्हें खाना खिलाने की कोशिश नहीं करें। उन्हें प्राकृतिक आवास में अनावश्यक हस्तक्षेप आपको नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, अगर हमें कहीं किसी वन्य जीव के अवैध शिकार या तस्करी जैसी गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो खुद जोखिम लेने के बजाय संबंधित वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना देना अधिक जिम्मेदार कदम है। और हमारे राजस्थान की बात करें, तो यहाँ भी वन्य जीव और प्रकृति भी अपनी अनोखी पहचान है। खेजड़ी, रेगिस्तानी वनस्पतियाँ, चिंकारा, नीलगाय, ऊंट और विभिन्न पक्षी, अनेक जीव इस क्षेत्र के प्राकृतिक जीवन का हिस्सा है दोस्तों। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र भी हमें सिखाता है कि प्रकृति कम संसाधनों में भी जीवन को संभव बना सकती है। ऐसे वातावरण में रहने वाले जीवों ने अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाला है, इसीलिए इनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना और भी जरूरी हो जाता है कि नहीं? जरा सोचिए कि अगर आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछिए कि हमारे समय में जंगलों में कौन कौन से पक्षी और जानवर पाए जाते थे, तो क्या हम उन्हें केवल तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? नहीं ना, हम चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी उन्हें प्रकृति में स्वतंत्र रूप से देख सके। इसलिए वन्य जीव संरक्षण केवल आज की जरूरत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है दोस्तों। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा काम करने करने की जरूरत नहीं है। बस छोटी छोटी आदतें भी बड़ा बदलाव ला सकती है, जैसे कि एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक कम करना, प्रकृति को स्वच्छ रखना, पक्षियों के लिए गर्मियों में पानी रखना और सबसे जरूरी वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार करना। याद रखिए कि प्रकृति केवल हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं है, हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं। अगर जंगल स्वस्थ रहेंगे तो वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे और वन्य जीव सुरक्षित रहेंगे तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत रहेगा और पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। तो एक छोटा सा संकल्प जरूर लें कि आप ना तो जंगलों को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वन्य जीवों को परेशान करेंगे, ना ही प्रकृति में कचरा फैलाएंगे और ना ही दूसरों को ऐसा करने देंगे, क्योंकि वन्य जीवों की रक्षा करना सिर्फ जानवरों को बचाना नहीं है बल्कि अपने पर्यावरण, अपने भविष्य और अपनी धरती को सुरक्षित रखना है। तो अगली बार जब किसी पेड़ पर बैठी चिड़िया को देखें, तो खुले आसमान में उड़ते पक्षियों को या किसी जंगल की तस्वीर देखें, तो इतना ज़रूर याद रखिए कि इस धरती पर हमारा ही नहीं बल्कि हर जीव का अधिकार है। इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। केवाईसी अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी केवाईसी अपडेट लिंक से बचिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज की खास सेगमेंट सिनेमा की बातें। उसमें हम बात करते हैं सप्ताह की चर्चित फिल्मों की और जानते हैं कि आखिर पर्दे पर क्या नया देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात उस फिल्म की जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, मिर्ज़ापुर द मूवी। ओटीटी की लोकप्रिय मिर्ज़ापुर दुनिया अब बड़े पर्दे पर पहुंच चुकी है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, रवि किशन समेत कई चर्चित कलाकार नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघर में रिलीज हुई है। श्रोताओं, मिर्ज़ापुर की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसके दमदार किरदार और उसकी कहानी रही है। यही वजह है कि फिल्म की रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच काफ़ी उत्सुकता देखने को मिली। अगर आपने मिर्ज़ापुर सीरीज देखी है तो फिल्म के किरदार और उनकी दुनिया आपको पहले से परिचित लग सकती है। वहीं नए दर्शकों के लिए ये अलग तरह का सिनेमाई अनुभव हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहेंगे कि किसी भी फिल्म को सिर्फ उसकी लोकप्रियता के आधार पर अच्छा या खराब नहीं कहा जा सकता। कहानी, अभिनय, निर्देशन और फिल्म दर्शकों को कितना जोड़ पाती है, ये बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसे फिल्म की जिसने रिलीज के बाद उम्मीद से कहीं ज़्यादा चर्चा बटोरी है, और वो है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित है। विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में शोभिनव सत्या मुख्य भूमिका में है। और ख़ास बात यह है कि शुरुआत में ये फिल्म बहुत बड़े स्तर की रिलीज के रूप में सामने नहीं आई थी, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ने इसकी तस्वीर बदल दी। कम बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और अब ये 11 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी रिलीज होने जा रही है। दोस्तों, इस फिल्म की खासियत ये है कि ये केवल मनोरंजन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आध्यात्मिकता, विश्वास, प्रेम और सेवा जैसे विषयों को सामने रखती है। यानी अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको कुछ देर सोचने पर मजबूर करें, तो हनुमान अंश आपके लिए अलग अनुभव हो सकती है। श्रोताओं, इन दोनों फिल्मों को देखकर एक बात साफ नजर आती है कि दर्शकों की पसंद कितनी विविध हो गई है। एक तरफ मिर्ज़ापुर द मूवी जैसी क्राइम ड्रामा दुनिया है जिसमें लोकप्रिय किरदार और जबरदस्त सिनेमाई माहौल है, और दूसरी तरफ हनुमान अंश जैसी आध्यात्मिक कहानी है जो शांत और विचारपूर्ण अनुभव देने की कोशिश करती है। यानी सिनेमा की दुनिया में हर दर्शक के

लिए कुछ न कुछ मौजूद है। लेकिन हमारे आज की समीक्षा का सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि क्या फिल्म सिर्फ बड़ी है या अच्छी भी है? क्या उसमें ऐसी कहानी है जो हमें बांधे रखे? क्या कलाकार अपने किरदारों के साथ न्याय कर पाए हैं? क्या फिल्म हमें हंसाती, भावुक करती या सोचने पर मजबूर करती है? श्रोताओं, अच्छी फिल्म वही नहीं जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करे, अच्छी फिल्म वो भी है जो दर्शक के दिलों और दिमाग में अपनी जगह बना ले। तो इस सप्ताह अगर आप सिनेमा जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपनी पसंद के हिसाब से फिल्म चुनिए। अगर आपको लोकप्रिय फ्रेंचाइजी और दमदार ड्रामा पसंद है तो मिर्ज़ापुर चर्चा में है। और अगर आप आध्यात्मिकता और प्रेरणादायक कहानी वाले कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं तो हनुमान अंश ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

तो दोस्तों अब घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

युवा साथियों, भी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसे ही सखियों ने याद किया तो आपका मनपसंद प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी राजेश्वरी। सभी श्रोताओं का और मेरी प्यारी सखियों का महिला जगत प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज की बात के साथ, और आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। सखियों, नुपुरों की बाजे झनकार, रास की रात सजी है आज। छनन छनन पायल बाजे, मुरली बाजे, साथ ही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रोग्राम में हम जो है आज कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी के जन्मदिन की बात करेंगे। सखियों, देश कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल जन्माष्टमी, अष्टमी, कृष्ण जयंती, श्री कृष्ण जयंती, यदुलुकुला अष्टमी, अष्टमी रोहिणी के नामों से भी जाना जाता है। यानी ये कृष्ण जन्माष्टमी के अलग अलग अलग अलग क्षेत्र के नाम हैं। हर साल ये पर्व जो है इसी माह यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दृक् पंचांग के अनुसार ये भगवान कृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव है। साथ ही एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो विष्णु जी के दशा अवतारों में से आठवें और 24वें अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। ये हिंदू चंद्रमण वर्ष पद के अनुसार अंधेरे पखवाड़े के आठवें दिन अष्टमी को मनाया जाता है। जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसके अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। अब हम यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: सखियों, हम कान्हा जी की बात कर रहे थे। श्री कृष्ण बचपन में बहुत ही नटखट थे और गोपियों के संग रास लीला रास रचाया करते थे समुद्र के किनारे। साथ ही अपने जो नंद बाबा यशोदा मैया के भी बहुत ही ज़्यादा दुलारे थे और पूरे नंद गांव के भी दुलारे थे। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये गीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: अगेन सभी माताओं को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा। सखियों, स्वच्छता पखवाड़ा 15 दिन का चलता है। स्वच्छता पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पखवाड़े का स्वच्छता अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। तभी आएगा नया सवेरा, जब होगा साफ सुथरा समाज हमारा, स्वच्छ होगा भारत, तभी स्वस्थ रहेगा भारत। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई। इसके तहत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग, स्कूल, कॉलेज और संगठन मिलकर सफाई के कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाना है। इसके मुख्य गतिविधियों की बात करें तो कार्यालयों, परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में श्रमदान करना है, पेड़ पौधे लगाना, हरित वातावरण को बढ़ावा देना भी इसमें शामिल है, पुराने रिकॉर्ड ई वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है वो इसमें शामिल है, और बेकार फाइलों को हटाना व सुरक्षित निपटान करना भी इसमें शामिल है। साथ ही विद्यालयों और संस्थानों में शपथ ग्रहण, रैलियां, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएँ इस अवसर यानी स्वच्छता पखवाड़े पर आयोजन किया जाता है। सखियों, अब लिए चलते हैं आपको फिल्म सफर की ओर, सुना देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: सखियों, पेडिक्योर सुना ही होगा, पैरों और नाखूनों की देखभाल और खूबसूरती बढ़ाने का एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। देखिए पेडिक्योर क्या है। असल में पेडिक्योर में पैरों की सफाई, जो डेड स्किन होती है उसको हटाना, नाखूनों को काटना और उनको शेप देना होता है, तथा पैरों की जो मॉलिश होती है वो भी इसमें शामिल होती है। देखिए, सबसे पहले आप अपने पैरों को पानी में भिगो लीजिए। एक टब में गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा शैम्पू, नमक और नींबू का रस मिलाएं। पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए इसमें पानी में डुबो कर रखें। फिर नाखूनों की सफाई और शेप कैसे दें? देखिए, पानी से पैर निकाल कर पोंछ लें। जो नेल कटर है उसकी सहायता से नाखूनों को ट्रिम करें और फाइलर से सही उनको शेप दें। क्यूटिकल पुशर की मदद से आप क्यूटिकल को साफ कर सकते हैं, जो डेड स्किन होती है उसको। साथ ही स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, प्यूमिस स्टोन या फिर आप जो खरदरा जो पत्थर है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें तलवों की मृत त्वचा, जो डेड स्किन होती है, उसको धीरे धीरे रगड़ कर हटाएं। स्क्रब से पैरों की त्वचा को साफ करें और फिर पानी से धो लें, तो पैरों में एक नई जान आ जाती है। पैरों को साफ तौलिए से पोंछिए, फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाइए और 10 मिनट तक के लिए हल्के हाथों से मालिश करें, ताकि आपके पैर अच्छे रहें और सुंदर हो जाए। साथ ही उसके बाद आप नेल पेंट लगा सकती हैं अपनी पसंद की। इसमें देखिए, गुनगुना पानी जो होता है उसकी महत्वता ज़्यादा होती है, साथ ही शैम्पू और नमक भी इसमें अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। साथ ही चीनी का भी आप यूज़ कर सकती हैं, या फिर आजकल कॉफ़ी का स्क्रब भी यूज़ किया जा सकता है, तो आप भी कॉफ़ी का स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। साथ ही डेड स्किन को हटाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डेड स्किन की वजह से ही हमारी एड़ियाँ फटती है, हमारे जो तलवे होते हैं पैरों के वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए डेड स्किन को हटाना सबसे ज़रूरी होता है। स्क्रब करने के बाद आपको तौलिए से पैरों को साफ़ कर लेना है, अच्छे से मसाज करके धोके, फिर मॉइस्चराइज ज़रूर करें, क्योंकि पैरों को तौलिए से अच्छे से पोंछ कर सुखाने के बाद आप अच्छी सी कोई क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं, फिर 2 मिनट तक हल्के हाथों से अपने पैरों को मालिश करेंगे, तो वो बिल्कुल खिलकर एकदम आपकी पैरों की त्वचा हंसने लगेगी, खिल जाएगी और हेल्दी हो जाएगी, आपके पैर बिल्कुल चमकने लगेंगे। अब लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

सखियों, अभी हमने एक प्यारा सा गाना सुना था, आवाज़ें थी शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की। सखियों, कल पूरा देश, पूरा शिक्षा विभाग जो है शिक्षक दिवस मनाने जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा सबसे ऊपर होता है, इसलिए गुरु अपने शिष्य को सब कुछ सिखाता है शुरू से लेकर अंत तक। तो गुरु सबसे ऊपर होता है, महान होता है। सखियों, अब घड़ी की टिक टिक यही इशारा कर रही है कि प्रोग्राम जो है अपनी समाप्ति की ओर है। आप अपनी रेडियो सखी राजेश्वरी को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी देर बाद आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम के नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल

0: में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया छोटी बहू फिल्म से। गीत की रचना इंदिवर की है और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया राधा का संगम फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई है अन्नू मलिक ने।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरवी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें हमारे आज के कलाकार समूह स्वर में हैं, तो आइए सुनते हैं इनकी गाई कुछ लोक रचनाएं।

समूह स्वर में अभी आप माटी के स्वर में कुछ सुन रहे थे लोक भजन। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 होने को हैं। अब आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन किया। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में न्यायिक अधिकारी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां। और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों को आज चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया। 41 जिलों के 10,245 वार्डों के लिए निर्वाचन आयोग ने आज निर्दलियों को चुनाव चिन्ह दिए। 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं के 77 वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अलवर के रिटर्निंग अधिकारी अंबालाल मीणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर उम्मीदवारों को लॉटरी सिस्टम के जरिए चुनाव चिन्ह बांटे गए हैं।
1: आज यानी 4 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इन सभी 300 उम्मीदवारों को, जो कि 65 वार्डों में हैं, जिनमें राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनको चुनाव प्रतीक आवंटन का आज दिवस है। और इसमें जो राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी हैं, उनको तो उनके जो प्रतीक राजनीतिक दल के हैं वो आवंटित हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में जहां एक ही प्रतीक को एक से अधिक प्रत्याशियों ने यदि ऑप्ट किया हुआ है, तो फिर उसमें लॉटरी से अलॉटमेंट हुआ है और लॉटरी में जिसको वो सिंबल मिला है उसके यहाँ चला गया है। और शेष प्रत्याशियों को उनकी दूसरी या तीसरी चॉइस है, यदि वो अन्य किसी ने नहीं भरी तो वो मिल गई।
0: इस बीच चुनाव का दिन नजदीक आने के साथ ही प्रदेश भर में प्रचार गतिविधियां चरम पर पहुंचने लगी है। भाजपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। प्रत्याशी रैलियों और नुक्कड़ सभाओं के साथ ही घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। आज जन्माष्टमी पर मंदिरों में भी प्रत्याशियों को मतदाताओं से पक्ष में वोट करने की अपील करते देखा गया। इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कल उदयपुर संभाग के दौरे पर रहने का कार्यक्रम है। वे भीलवाड़ा में रोड शो में शामिल होंगे। वे निकाय चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। गौरतलब है कि 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में मतदान के लिए कुल 38,891 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतगणना 14 सितंबर को होगी। अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख तथा वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। मंच के दौरान न्यायिक वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की उस उपलब्धि को राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह सफलता

0: भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इसरो ने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग कर सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 2 शिक्षकों सहित 82 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करेंगी। नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में चाकसू के टुमली का बास के उच्च प्राथमिक विद्यालय की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी और झालावाड़ के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के डॉक्टर दिव्येंदु सेन को ये पुरस्कार मिलेगा। डॉक्टर वर्तिका को नवाचार, तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए तथा डॉक्टर दिव्येंदु को ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से प्रशिक्षित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने इस अवसर पर शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए शिक्षकों को विद्यार्थियों का जीवन गढ़ने वाला प्रेरक बताया। श्री बागड़े ने शिक्षकों से विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाने और संस्कार निर्माण से जुड़ी शिक्षा प्रदान करने का आह्वान किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने आज शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में ACB से संबंधित लंबित मामलों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर भी चर्चा की गई। दोनों अधिकारियों ने आगामी स्थानीय चुनाव के दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता से जुड़े विषयों पर गंभीरता के साथ काम किए जाने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान के जन्म की खुशियां साझा करने के लिए सुबह से ही भक्तों में उत्साह बना हुआ है। लोग व्रत रखकर उपासना कर रहे हैं। आधी रात बाद जन्मोत्सव के साथ ही बधाइयां और विधिवत पूजा अर्चना के साथ पंच प्रसादी बांटी जाएगी। जयपुर के गोविंद देव जी, करौली के मदन मोहन, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर सहित सभी छोटे बड़े कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गई है और विशेष आयोजन रखे गए हैं। व्रत क्षेत्र से लगते भरतपुर और डीग जिलों में जन्माष्टमी को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे डीग संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जिले के पुंछरी का लोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में सपरिवार दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की।
1: आज ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी डी के पोछरी का लोटा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। ब्रज के श्री कृष्ण मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग यहां आ रहे हैं। इसके साथ ही आज से डीग में कामा उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पर्यटन विभाग की ओर से ब्रज की संस्कृति को दर्शाने के लिए चित्रकला, मेहंदी और राधा कृष्ण पोशाक प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम को कामवन के कोट उपर स्टेडियम में रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं मध्य रात्रि में कामवन के प्रसिद्ध मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: राजसमंद के श्रीनाथ जी में जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि परंपरागत रूप से 21 बंदूकों की सलामी दी जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीनाथ जी मंदिर नाद्वारा में सुबह से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है व वातावरण कृष्णमय बना हुआ है। नगर के रिसाला चौक में श्री कृष्ण लीलाओं से सुशोभित शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण करेगी। रात्रि 12 बजे कान्हा के जन्म की खुशी में तोपों से 21 बार गोले दागे जाएंगे। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
0: राजधानी जयपुर में जन्माष्टमी के मौके पर गोविंद देव जी सहित अंदरूनी शहर के मंदिरों में देर रात तक होने वाले आयोजनों को देखते हुए जयपुर मेट्रो की संचालन अवधि रात 1 बजे तक बढ़ा दी गई है। अंतिम मेट्रो मानसरोवर से रात 1 बजे रवाना होगी, जबकि बड़ी चौपड़ से ये 1:10 पर चलेगी। शहर में कल नंदोत्सव के आयोजन और शोभा यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था के आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।

0: प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर तेजी आई है और कई शहरों पर मॉनसून की अच्छी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर और पूर्वी जिलों में आज सुबह से ही घने बादल छाए रहे और रुक रुक कर बरसात होती रही। बारा और हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर बना रहा। सवाई माधोपुर में बीते दो दिनों से हो रही बरसात से एक बार फिर नदी नालों में पानी की आवक हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
1: जिले में कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। कभी हल्की तो कभी तेज बरसात से नदी नाले उफान पर आने से अनेक स्थानों पर यातायात बाधित रहा और जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। तालाब और बांधों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। मानसरोवर बांध के जल स्तर 29 फीट पर पहुंच गया है। वहीं गिलाई सागर बांध के जल स्तर में आज दिन भर में 5 फीट की वृद्धि हुई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के चलते 24 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार नए बने तंत्र का प्रभाव 6 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। विभाग ने भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग के कई इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में डीजल स्कूल बसों के संचालन पर लगे प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 10 साल से कम पुरानी डीजल स्कूल बसों के संचालन पर लगी रोक पर अंतरिम राहत दी है। न्यायाधीश मनीष शर्मा की एकलपीठ ने परिवहन विभाग के आदेश पर अगली सुनवाई तक परिवहन विभाग, वायु गुणवत्ता और भरतपुर परिवहन विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में पाली जिला राज्य में पहले स्थान पर रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि जिले को 92.96 अंक हासिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों तक योजना की जानकारी और पहुंच सुनिश्चित करने के साथ नियमित मॉनिटरिंग के चलते पाली को ये उपलब्धि मिली है। रैंकिंग में दूसरा स्थान राजसमंद जिले को हासिल हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्हों का आवंटन किया। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। सर्वोच्च न्यायालय की मेजबानी में न्यायिक अधिकारी विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, मंदिरों में जन्मोत्सव की तैयारियां। और राज्य के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है लक्ष्मीचंद नागर ने। 12 में नगर निकाय आम चुनाव के अंतर्गत नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सभी 6 निकाय क्षेत्रों में 905 अभ्यर्थियों ने कुल 1030 नामांकन पत्र भरे। जिले में अंतिम दिन तक कुल 1083 अभ्यर्थियों ने 1225 नामांकन फॉर्म भरे हैं। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त नामांकन पत्रों की 1 सितंबर को संवीक्षा की गई, जबकि कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए गए। चुनाव चिन्हों का आवंटन आज किया गया। पहले चरण में 12, अंता और सीस वाली में 9 सितंबर को तथा दूसरे चरण में छबड़ा, मांगरोल और अटरू में 11 सितंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 सितंबर को होगी। नगर पालिका चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी बालमुकुंद असावा ने बीते दिनों सीस वाली नगर पालिका क्षेत्र का सघन दौरा किया। उन्होंने मतदान केंद्रों और मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने PM श्री केंद्रीय विद्यालय और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए 10 मतदान बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच की। बीते दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिलेवासियों को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। बीते दिनों कृषि उपज मंडी में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह में जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर बीते दिनों 2 दिवसीय सघन HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के पहले दिन जिले भर में 611 बालिकाओं का टीकाकरण किया। जिले में अब तक 5,621 बालिकाओं का टीकाकरण हो चुका है। CMHO डॉक्टर जगदीश कुशवाहा ने बताया कि HPV वैक्सीनेशन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिले में रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रक्षाबंधन के दिन बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया, तो वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देकर जीवन भर रक्षा का वादा किया। रक्षाबंधन की झलक चुनाव विभाग में भी देखने को मिली। चुनाव में 100% मतदान के उद्देश्य से जिले की सभी शिक्षण संस्थाओं में स्वीप रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्राओं ने भाइयों की कलाई पर वोट राखी बांधकर उन्हें आगामी नगर निकाय चुनाव में मतदान करने का संकल्प दिलाया। बीते दिनों कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सीमा लांघकर मादा चीता वीरा को जिले के शाहबाद वन क्षेत्र में देखा गया। उसका मूवमेंट बिहटा गांव के जंगल के निकट खेतों के आसपास देखा गया। पिछले करीब 2.5 साल में यह तीसरी बार है जब वीरा का मूवमेंट जिले के जंगलों में देखा गया है। बीते दिनों जिला प्रशासन ने स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट सक्षम सखी शुरू किया। इसके तहत जिला मुख्यालय पर जिले का पहला ग्राम श्री मार्ट खोला गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ावा देने और ग्रामीण दीदी की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। वन धन केंद्रों के माध्यम से बनाए इन समूहों का उद्देश्य महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराना है। बीते दिनों श्रावण मास के चलते जिले में कांवड़ यात्राओं की धूम रही। धुतरिया गांव में शिव भक्तों की ओर से दूसरी कांवड़ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। कांवड़ यात्रा अंता के नागदा स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आवण रे साथ ही प्रचार तेज, निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटन करिया। ब्रिक्स देशों रा मुख्य न्यायाधीशों रो सम्मेलन आज नवी दिल्ली में शुरू। सुप्रीम कोर्ट री मेजबानी में न्यायिक अहलकार न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करेला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी माथे आज प्रदेश भर में धार्मिक उमाव। मिंद्रा में जन्मोत्सव री तैयारियां और राज्य में अगुणी और दिखनाद जिला में बिरखारी गतिविधियां में तेजी। समाचार के साथ है मैं शंभु सिंह। अब समाचार विगतवार। प्रदेश में 309 नगरीय निकाय में होवण वाला चुनाव सारू उम्मीदवार ने आज चुनाव चिन्ह दे दीजिया है। 41 जिला रा 10,245 वार्ड सारू निर्वाचन आयोग आज निर्दलीय और तीजा मोर्चा दला ने चुनाव चिन्ह बांटिया। 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगर पालिकाओं रा 77 वार्ड में निर्विरोध चुनावी हो है। अलवर रा रिटर्निंग अहलकार अंबालाल मीणा बतायो कि निर्वाचन आयोग रा निर्देश माथे उम्मीदवार ने लॉटरी सिस्टम री मार्फत चुनाव चिन्ह बांटी जिया।
4: आज यानी 4 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इन सभी 300 उम्मीदवारों को जो कि 65 वार्डों में है जिनमें राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनको चुनाव प्रतीक आवंटन का आज दिवस है। और इसमें जो राजनीतिक दलों के द्वारा खड़े किए जो प्रत्याशी हैं उनको तो उनके जो प्रतीक राजनीतिक दल के हैं वो आवंटित हो चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों में जहां एक ही प्रतीक को एक से अधिक प्रत्याशियों ने यदि ऑप्ट किया हुआ है तो फिर उसमें लॉटरी से अलॉटमेंट हुआ है और लॉटरी में जिसको वो सिंबल मिला है उसके यहाँ चला गया है और शेष प्रत्याशियों को उनकी दूसरी या तीसरी चॉइस है, यदि वो अन्य किसी ने नहीं भरी तो वो मिल जाएंगे।
3: ई बीच चुनाव रो दिन नजदीक आवण रे साथ ही प्रदेश भर में प्रचार गतिविधियां चरम माथे पुगण लागी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों खास दला खुदरा उम्मीदवार ने जीतावण सारू ठावा नेताओं ने मैदान में उतारनो शुरू कर दियो है। उम्मीदवार रैलियां और नुक्कड़ सभावां रे साथ ही घर घर जार लोगों मिल रहा है। आज जन्माष्टमी माथे मेंद्रा में उम्मीदवार मतदाताओं पगस में वोट करण सारू अर्ज करता दिख्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्माई काले उदयपुर संभाग रा दौरा माथे रहेला वे भीलवाड़ा माए रोड शो माए भेड़ा वेला और निकाय चुनाव ने लेर जन नुमाइंदा और पार्टी ओहदादारा री मीटिंग लेवेला। ध्यान जोग है कि 9 और 11 सितंबर ने दो चरणा माए वोट सारू कुल 38,891 उम्मीदवार मैदान माए है। वोटों की गिनती 14 सितंबर ने वेला और अध्यक्ष रो चुनाव 21 सितंबर ने वेला। ब्रिक्स देशों रा मुख्य न्यायाधीशों रो सम्मेलन आज नवी दिल्ली में शुरू हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ई मंच री मेजबानी कर रियो है और 3 दिन रो मंच न्याय बंदोबस्त अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटारा प्रौद्योगिकी और सतत विकास समेत कई मुद्दा माथे बतल रो मौको देवेला। इनमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों रा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय रा न्यायिक प्रमुख और ठावा न्यायिक नुमाइंदा हिस्सों ले रिया है। इस दौरान भारत रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस चीन मिस्र इंडोनेशिया संयुक्त अरब अमीरात बेलारूस कजाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका ईरान और उज्बेकिस्तान रा न्यायिक नुमाइंदा मंडल रा प्रमुखों के साथ दो पक्षारी मीटिंग करेला। भारत अंतरिक्ष हलका में एक और मोटी कामयाबी हासिल करी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज तड़के श्रीहरिकोटाऊ GSLV-F17 रॉकेटरी मार्फत देश रा पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 रो कामयाब प्रक्षेपण करियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो री ई कामयाबी ने देश सारू मान रो भगत बतावता कहो कि आ कामयाबी भारत रा अंतरिक्ष हलकारी ठावी नवाचार और बद्धता बूता ने दर्शावे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कामयाब प्रक्षेपण री सराहना करता देश रा वैज्ञानिका ने शुभकामनावां दी है। इसरो प्रमुख वी नारायणन ई कामयाबी माथे कहो कि वो मिशन भारत री पृथ्वी अवलोकन बूता ने और मजबूत करेला। वणा कहो कि इसरो ई प्रक्षेपण वाहन ने काम में लेवता सब भारी उपग्रह ने स्थापित करया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 रे चालू वण जावण पाथे ओ भू कक्षाओं भारत रो पहलो समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएला जो देश सारू महत्व रणनीतिक डेटा दे सकेला। शिक्षक दिवस रे मौके काले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश रा 2 शिक्षका समेत 82 ठावा शिक्षका ने सम्मानित करेला। नवी दिल्ली में होने वाला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जलसा में चाकसूरा टूमली का बासरी उच्च प्राथमिक विद्यालय री डॉक्टर वर्तिका गुलाटी और झालावाड़ रा महात्मा गांधी राजकीय स्कूल रा डॉक्टर दिव्यंतु सेन ने ओ इनाम मिलेला। डॉक्टर वर्तिका ने नवाचार तकनीक और गतिविधि आधारित शिक्षण सारू और डॉक्टर दिव्यंदु ने गांवाई हलकारा पडेसरा ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिखावण देवण सारू ओ इनाम दियो जायला। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ई मौके शिक्षका ने शुभकामनावां दी है। वणा पहली रा राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने याद करता शिक्षका ने पडेसरा रा जीवन गढ़न वाला बताया। श्री बागड़े शिक्षकों पढ़ेसरा रा बौद्धिक बुता ने बधावण और संस्कार पैदा करण जुड़ी शिक्षा देवण री अरज करी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रा महानिदेशक गोविंद गुप्ता आज शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मिलिया। ई दौरान प्रदेश में ACB जुड़िया विचारू मामला और घूस रे खिलाफ सरकारी जीरो टॉलरेंस नीति माथे बतल करी। दोनों एहलकार आवता निकाय चुनाव रे दौरान प्रदेश में आदर्श आचार संहिता जुड़िया मुद्दा माथे सावचेती रे साथे काम करण माथे जोर दियो। लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करण में पाली जिलो राज्य में पहली ठोड़ माथे रियो है। जिला चिकित्सा एहलकार डॉक्टर विकास मारवाल बतायो कि जिला ने 92.96 अंक हासिल किया। वणा बतायो कि लाभार्थियों तई योजना री जानकारी एर पहुँचते करण रे साथ बरोबर मॉनिटरिंग रे चालता

0: आदि बांटी जायला। जयपुरा गोविंद देव जी, करोजीरा मदन मोहन जी, नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मिंदर समेत छोटा मोटा कृष्ण मिंद्रमाय जन्मोत्सवी झांकियां सजाई जी है और खास आयोजन वेरिया है। ब्रज हल्काऊ लागता भरतपुर और डीग जिला माय जन्माष्टमी ने लेर लोगामाय न्यारोई उमाव देखने मिल रही है। हमारी डीग खबरनवीश बतायो के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिलारा पूंछरी का लोठारा श्रीनाथ जी मिंदरमाय परिवार समेत दर्शन करने प्रदेश री खुशहाली समृद्धि री कामना करी।
1: आज ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी डीग के पूंछरी का लोटा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। ब्रज के श्री कृष्ण मंदिरों के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग यहां आ रहे हैं। इसके साथ ही आज से डीग में कामा उत्सव की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पर्यटन विभाग की ओर से ब्रज की संस्कृति को दर्शाने के लिए चित्रकला, मेहंदी और राधा कृष्ण पोशाक प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम को कामवन के कोटउपर स्टेडियम में रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं मध्य रात्रि में कामवन के प्रसिद्ध मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: राजसमंद राज श्री नाची माए जन्माष्टमी माथे आधी रात रीत मुजब 21 तोपान इसला में दी जायला। और ब्यूरो हमारा खबर नवीसू।
2: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीनाथ जी मंदिर नादवारा में सुबह से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है व वातावरण कृष्णमय बना हुआ है। नगर के रिसाला चौक में श्री कृष्ण लीलाओं से सुशोभित शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो नगर भ्रमण करेगी। रात्रि 12 बजे कान्हा के जन्म की खुशी में तोपों से 21 बार गोले दागे जाएंगे। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद।
0: राजधानी जयपुर माए जन्माष्टमी रे मौके गोविंद देव जी मिंदर समेत शहर मायरा मिंद्रा माए देर रात ताई होने वाला आयोजन ने देखता जयपुर मेट्रो रा संचालन भगत ने रात 11 बजे ताई बधा दी जिया है। मेट्रो मानसरों रात 1 बजे रवाना वेला, जद के बड़ी चौपड़ू आ रात 1:10 माते रवाना वेला। शहर माए काले नंदोत्सव रा आयोजन ए शोभा यात्रा ने देखता यातायात रा जरूरी बंदोबस्त करी जिया है। नबे मौसम प्रदेश माए बिरखरी गतिविधियां माए उतार चढ़ाव रे बीच आज फिरों कई हल्का माए मानसून मेहरबान रियो। राजधानी जयपुर और अगुणी जिला माए आज सवार में घना बादल छाई जा रिया और रुक रुक ने बिरखा वे तीरी। बारा और हाड़ोती हल्कारा जिला माए आज सवार में रिमझिम बरसात रो दौर चाल तो रियो। सवाई माधोपुर माए लाड़ला 2 दिनों वेरी बिरखाऊं एक कर फेरू नदी नाला माए पानी री आवक वेरी है। मारा खबर नवीस बतायो के जिला माए कई थोड़ा जल भरावरा हालात पड़ी उड़ा है।
3: जिले में कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। कभी हल्की तो कभी तेज बरसात से नदी नाले उफान पर आने से अनेक स्थानों पर यातायात बाधित रहा और जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। तालाब और बांधों के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। मानसरोवर बांध के जल स्तर 29 फीट पर पहुंच गया है। वहीं गिलाई सागर बांध के जल स्तर में आज दिन भर में 5 फीट की वृद्धि हुई है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: बंगाल री खाड़ी माए बनिया कम दबाव रा सिस्टम रा असरों 24 जिला माए तेज बिरखारो अलर्ट काढ़ी जो है। मौसम महकमा मुजब नुआ बनिया तंत्र रो असर 6 सितंबर ताई चालता रेवण री आस है। महकमो भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग रा घणकरा हल्का माए बिरखारे साथ तेज हवा चालन री आस जताई है। कोटा और भरतपुर संभाग रा कुछ हल्का माए भारी बिरखाई वह सके है। न अब आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। प्रदेश माए नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आवण रे साथ प्रचार तेज। निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह आवंटन करिया। ब्रिक्स देशारा मुख्य न्यायाधीशों रो सम्मेलन आज नवी दिल्ली माए शुरू। सुप्रीम कोर्ट री मेजबानी माए न्यायिक अहलकार न्यारा न्यारा मुद्दा माथे बतल करेला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी माथे आज प्रदेश भर माए धार्मिक उमाव। मिंद्रा माए जन्मोत्सव री तैयारियां। पर राजेरा अगुणी और दिखनाद जिला माए बिरखारी गतिविधियां माए तेजी। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।
4: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

खेतीबाड़ी सुनने वाले सें किसान भाई ने टाबरा ने माँ बहना ने गणे हेतु मकबूल भई रो राम राम। किसान भाई देखो राम राम तो ही, जब चौपाल में बैठा है तो घर बीती पर बीती खेत कल्याण की बात करा, लेकिन आज थोड़ी सी बात करा कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी प्रेम भक्ति और कर्म का उत्सव है। किसान भैया आप लोगों ने ढेर सारी कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। भगवान कृष्ण जी का आज जन्म हुआ था और आज के दिन हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये दिन मनाया कर रहा। तो किसान भैया तो आज ये बात हुई है, अब बात करना थोड़ा सा खेती में नवाचार, कि भाई खेती के अंदर नवाचार भी होना चाहिए कि खेती में आपा उपज बढ़ाना चाहवा और उपज बढ़ाने वास्ते अपन ने खेती में कहीं करना चाहिए जो उपज ज़्यादा बढ़ जावे। तो बिना अपन क्या करेंगे एग्रीकल्चर इन्वोटेशन इन एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा री रीढ़ री हड्डियों है। अगर बढ़ती जनसंख्या बदलता मौसम घटती जमीन की वजह पारंपरिक खेती कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान आधुनिक तकनीकी और नवाचार के माध्यमों खोजा जा रहा है। खेती में नवाचार किसानों की आय बढ़ाने लागत कम करने और उत्पादन में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए रहे। खेती में प्रमुख नवाचार प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग में सेंसर यानी GPS ड्रोन और डेटा एनालिसिस का उपयोग कर फसल की पानी खाद और कीटनाशकों की सटीक मात्रा तय की जाती जाया कर रहे, जीव संसाधनों की बचत होया कर रहे, उत्पादन बढ़िया कर रहे और मिट्टी की सेहत बनोड़ी रहे। ड्रोन टेक्नोलॉजी खेत में ड्रोन का उपयोग तेजियों बढ़ रहा, यूं प्रमुख उपयोग यानी खेत का मैपिंग और निगरानी कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव फसल की बीमारी का पता लगाना ड्रोन सुन समय और मेहनत दोनों ही बच जाए कर रहे। हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक खेती ये बिना मिट्टी वाली आधुनिक खेती कहलाए कर रहे। हाइड्रोपोनिक जो है बिना मिट्टी वाली खेती, हाइड्रोपोनिक पौधे पानी में पोषक तत्व घोल उगाए जाए कर रहे। आप पानी में उग गए, देखो कई तो अपन की खेती ले मिट्टी में उग गए, आप पानी में उगने वाली हाइड्रोपोनिक खेती है। एरोपोनिक पौधों की जड़ा पर पोषक तत्व द्वारा स्प्रे किया जाए कर रहे, जीव कम जगह में ज्यादा उत्पादन कम पानी की खपत और साल भर खेती संभव हो जाए कर रहे। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली इसे क्या करे स्मार्ट इरिगेशन में सेंसर के जरिए मिट्टी की नमी मापी जाए कर और जरूरत के अनुसार ही पानी देवा। पानी की बचत 40-50% तक होया कर है। फसल की गुणवत्ता में भी सुधार आवे। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, जैविक खाद गोबर जीवामृत बीजामृत और प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उत्पादन और सुरक्षित होया कर है। ये टिकाऊ खेती का बेहतरीन विकल्प है। किसान भाई मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान ने मौसम का पूर्वानुमान बाजार मूल्य खाद बीज की जानकारी और सरकारी कोई भी मतलब खेवन का मतलब यह है कि कोई भी ये तरह की जानकारी आप जब लेवा तो बीमा कहीं है कि मोबाइल ऐप के जरिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ले सका। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस तकनीक इन संरचना में नियंत्रण वातावरण तैयार करें जीव फसल मौसम के हिसाबों सुरक्षित रह सके, कम जगह में ज़्यादा उत्पादन हो जावे, सब्जियां और फूलों की गुणवत्ता में खेती होया करें। खेती में नवाचार के लाभ कहीं कहीं हैं, आज थोड़ी सी आप बात करा कि खेती में नवाचार का लाभ है उत्पादन में वृद्धि होया करे। सब वो मोटो लाभ आप जो चाहवा कि भाई आप खेत के अंदर उत्पादन बढ़ना चाहिए, कम जगह के अंदर ज़्यादा आमद होनी चाहिए,

0: यानी कम जगह के अंदर ज्यादा खेती, ज्यादा आप के उत्पादन होना चाहिए तो बा नवाचारों संभव है। लागत में कमी आना, यानी इनमें लागत में भी बहुत ज्यादा कमी आ जाए करें। मौसम जोखिम कमी, यानी मौसम को जो जोखिम हो बीमें भी कमी आ जावे, क्योंकि आजकल की यान यान का नवाचार हो गया कि आप के खेत की नमी ने नाप लेवे, बिन अनुसार आप पानी देवा, आप के पानी की बचत हो तो आप समय के अनुसार जब भी जरूरत पड़े आप खेती में पानी दे सका। और आजकल तो किसान लोग इतना सातिर हो गया कि आपके खेत के अंदर एक मोटी सारी डिग्गी बना लेवे, जब भी जरूरत पड़े बस डिग्गी में पानी लिया और भी मैं सिंचाई कर देवे आप के खेत में, तो भी यूँ कहीं है कि आपने फायदो ही फायदो है। मिट्टी और पानी की संरक्षण, मिट्टी और पानी का संरक्षण होया करे भी यूँ भी ज़्यादा फायदा हुआ है। किसान की आय में बढ़ोतरी, यानी कि लागत हो जावे कम आय बढ़ जावे, बहुत कम लागत के अंदर आप फसल ले लेवा और आय में भी बढ़ोतरी हुआ है। इसके अलावा टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती, खेती में टिकाऊपन आ जाओ और पर्यावरण अनुकूल खेती हो जाएंगे, यानी जो मौसम है वह मौसम के अनुसार आप खेती करा तो भी यूँ कहीं है कि बीरे माध्यम आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सका। अब आप बात करें कि मेरा निष्कर्ष निकलियो कहीं है कि खेती बाड़ी में नवाचार आज के समय की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों अपना किसान कम मेहनत में ज्यादा उपज प्राप्त कर सके। वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर काम करने से कृषि क्षेत्र का भविष्य और भी उज्जवल हो सके है। तो किसान मैं आ तो बात ही आप खेती में नवाचार की, और आप बार देखो एक बार और आपने ढेर सारी शुभकामना दूँ कृष्ण जन्माष्टमी की, कि आज पूरा देश के अंदर जगह जगह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा, गली गली के अंदर आपने देखा कि लोग गली गली सजा रहे यार भी तरह तरह का आइटम राख रखूर, और कृष्ण जी का जो जन्म है रात शायद 12 बजे और बी टाइम बड़ी धूमधाम बड़ी ही लगन और उत्साह के साथ इन्हें मनाए। तो किसान भाई बाता चीता तो और करा सुना काम री बात।
1: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: तो किसान भाई देखो अबार आप काम री बात सुने रहा। अब देखो आप गांव गोड जवान बड़े कोई भाई सेन मिले भी हूँ बातचीत क्या कर रहा, तो झोड़ा गांव का माने ओम प्रकाश जी मिल गया भी हूँ मैं करी बातचीत, तो सुनो आ बातचीत।
5: मैं समय समय पर कोई ना कोई बातचीत करिया कर रहा। आज मांग के सामने एक युवा किसान है, राम राम सा।
6: राम राम सा, राम राम सा।
5: कहीं तक नाम आप रो?
6: ओम प्रकाश
5: जी। गांव है जोरड़ा।
6: जोरड़ा
5: गांव की कोई पहचान है?
6: हाँ सर, जोरड़ा में एक तो

0: हरिराम बाबा को मंदिर है
1: हरिराम बाबा को मंदिर
0: बस।
1: है और दूर दूर सरदार दिल्ली आवा पड़े है।
0: हाँ
1: और
0: दूर
1: एक
0: दूर।
1: मेड़ो भी लागे ने भी में।
0: हाँ सावन भादवा 2 महीना मेड़ो लागे,
1: दो महीना मेड़ा लागे, खूब लोग आवे,
0: खूब लोग आवे, गुजरात और हरियाणा पंजाब तक
1: है ना, दूर दराज जो आवे। और रेत का देखो टिल्ला भी दिख रहा है, रेत का टिल्ला खूब है,
0: खूब टिल्ला
1: है ना, मोटा खूब रेत का टिल्ला है।
0: हाँ रेतीली धरती है,
1: रेतीली धरती है, मोटा मोटा टिल्ला है,
0: मोटा मोटा टिल्ला है।
1: अच्छा ओम जी एक बात बताओ, मैंने के गांव में बिजली पानी थैंक सुविधा,
0: बिजली पानी री सुविधा आप सिंचित एरिया है अपना,
1: सिंचित एरिया है,
0: सिंचित वीरानी भी है और सिंचित भी है, ट्यूबवेल और
1: ट्यूबवेल वगैरह भी है, पानी मीठो है,
0: पानी मीठो है।
1: अच्छा बढ़िया बात है। आपा की तो भी को खेत है?
0: हमने 15-20 बीघा जमीन है,
1: 15-20 बीघा ट्यूबवेल है आपा के भी?
0: ट्यूबवेल है।
1: अच्छा तो कहीं कहीं फसल लिया करो थे?
0: देखो ट्यूबवेल में अबार तो मूंगफली लगेड़ी है,
1: मूंगफली है
0: हाँ, और बाजरा मूंग
1: वरानी भाव भी और अभी भाव।
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा तो बढ़िया बात है। देखो क्या कराना है कि भाई ट्यूबवेल है तो आप सेम चीजें आप बा सको, मर्जी हो जो सब्जी वगैरह भी बा सको,
0: सब्जी बतो जागरूक इलाको कौन है आप सब्जी और वगैरह यहाँ कर सकें।
1: हाँ
0: बाकी आप मूंगफली गेहूँ चना मेथी ऐसी
1: ये सेंग भाव
0: सेंग भाव।
1: तो इनको बीज वगैरह घर के काम में लोगे कि बाहर लाओ बारू?
0: देखो एक दो अलग अलग वेरायटी रहा है, जी अलग अलग वेरायटी जी चोइस हुए तो भी हिसाब
1: बाजारो लो तो ओम जी की सावधानी रखो,
0: सावधानी देखो एक दूसरे मत विश्वास करना पड़े और बाकी दुकान वाला पर भी देखना पड़े उपचारित वास्ते अपन कहीं कहीं चीजें लेनी है कहीं नहीं लेनी।
1: ना बढ़िया बात करी, उपचारित होना चाहिए,
0: उपचारित
1: होना टीको लगाना होना जरूरी है।
0: हाँ
1: कई बार तो बाजार में मिले पर उपचारित थोड़ी मिले,
0: नहीं बाजार में उपचारित कौन मिले, मैंने घर लिया पर उपचारित
1: क्या करो उपचारित
0: फंगिसाइड है कोई पाउडर या कीटनाशक भी आप देखो मूंगफली 5-7 दिन दिख जावे, दूसरो मौसम पर डिपेंड करे की मौसम टेम्परेचर आपने सामान्य है या कम ज्यादा है, पर बीज उगने पर डिपेंड
1: करे। तो मूंगफली वगैरह पूरी तैयार और कितने दिन में तैयार हो जावे?
0: देखो अलग अलग वैरायटी है जी हाँ, एक 90 दिनारी आवे, एक 120 दिनारी आवे और एक के 140-160 दिनारी आवे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो जी हाँ ना मान लो अपा मूंगफली या आप जो जो फसल भारे हो तो बीरो बजे कहीं ना में कोई हरी बीमारी भी आवे बीमे।
0: हाँ
1: तो बीरो का उपचार करो
0: बीम, देखो दुकान वालों में भी सलाह लेनी पड़े, संपर्क करना पड़े और बाकी जी फील्ड में सुपरवाइजर भी सलाह करा और आकाशवाणी भी सुना
1: सुनो।
0: हाँ बीम में जिया हर रोग री हर चीजें बताता रहे भी हिसाब जी बीमारी हिसाब ट्रीटमेंट करा।
1: आप हर गुरुवार के दिन एक विशेषज्ञ ने बुलावा।
0: हाँ
1: गुरुवार के दिन अगर कोई भी आपकी समस्या आई खेत में तो आप फोन कर करूर पूछ सको।
0: अच्छा
1: और बीरे अलावा एक आपने ध्यान हो तो किसान कॉल सेंटर है।
0: अच्छा
1: बीरा आपने ध्यान है ना तो बीमा कहीं है कि 1881-1551 ये नंबर है।
0: अच्छा।
1: तो बार नंबर के ऊपर आप फोन करो तो आपका पैया भी कौन लगे और आपने जानकारी पूरी घर बैठी मिल जावे।
0: सही है,
1: समय की बचत, पैसा की बचत और घर बैठे आपने जानकारी
0: मिल
1: जावे। यूं संपर्क में रहिए जो किसान कॉल सेंटर
0: भी। जरूर जरूर
1: है को नहीं। और सावधानी जी आप छिड़काव कर रहे हैं कोई कीटनाशक का तो भी सावधानी
0: बिल्कुल टाकनी पड़े साहब
1: है ना, मुंडो बांधो,
0: मुंडो बांधना पड़े आता में ग्लोव्स भी लगावा
1: जेरी लो ना मेरे वजू
0: मेरे वजू
1: ज्ञान अबार। कई तरह की नई नई टेक्नोलॉजी चल गई खेती में, नवाचार कह सका आपा, तो भी मैं कोई टेक्नोलॉजी था कोई काम में ली, कोई मशीनरी काम में ली गई
0: मशीनरी जो की आपने कृषि यंत्र में काम आवे ना जकी चीजें जकी पुराने चाले जकी भी यूज करा बाकी नई टेक्नोलॉजी कोई
1: काम में ली कोई। और ज्ञान अपा वो अपा की फसल तैयार होगी भी ने काटना भी मत थ्रेसर काम में लियो।
0: बिल्कुल थ्रेसर भी लेवा भी कटिंग करने वास्ते जी ट्रैक्टर क्लार बत्ती भी
1: दांती आवे।
0: हां बाबी यूज करा।
1: हां हां हां मैं दांती यूज करो।
0: हां मूंगफली छानने वास्ते जमीन रे में निकालने वास्ते एक चालन आवे वो भी यूज
1: बाबी यूज में ले। यानी एक अपा के औजार कंप्लीट अपा के तैयार होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: औजार कंप्लीट तैयार है तो निश्चित रूप में अपा ने फायदा मिली।
0: बिल्कुल
1: है कोनी
0: एक तो जी आज टाइम में लेबर कम मिले और मशीन काम भी जल्दी हुए, पैसा भी कम लागे।
1: मिट्टी किसी अपने बालू
0: ढालू
1: बालू मिट्टी हर फसल माना,
0: हर फसल हुआ,
1: हर फसल माना। पानी चाहिए,
0: पानी चाहिए,
1: है ना। पानी अगर इन्हें भरपेट मिल जावे
0: तो फसल भी तगड़ी हुए।
1: फसल
0: ज्यादा थोड़ा सा बरसात माते डिपेंड करे, देखो बरसात कम हुए तो मतलब फसल भी कम।
1: पड्डे लिखे भी होते हैं
0: ज्यादा,
1: कितनी पड्डी, थोड़ी बहुत पड्डी साइन वगैरह कर लो।

0: देखो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हो भी मैं बढ़िया खेती को काम करो आप, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बुजुर्ग का आप धंधो है को नहीं, और भी ना अगर आप आगे बढ़ावा तो ओम जी बढ़िया रहे।
1: बिल्कुल सर
0: है को नहीं, और खेती में मजदूरी तो हुई है।
1: बिल्कुल वैसा
0: है ना। आज देखा जाए ना आप कोई कुछ धंधा दूसरा कर रहे हैं और एक आदमी 10-20 बीघा जमीन है उसका ना है और भी मैं वो सही तरीके खेती कर रहे हैं
1: तो वो आप कमार खा सके
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: आराम कमा खा सके, घर में देखो अनाज भी हो जावे, दूध दही छाछ की डाव डंडा भी रखो।
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: हाँ गाय भैंसे रखा,
0: मेरा गोबर काम आ जाओ खेत में,
1: गोबर खेत में काम आ जावे। बाकी हर चीज मतलब एक तो बारे चीज यार कम ना आकने पड़े, गोबर खाद भेजना और नहीं तो डीएपी यूरिया लार सब थोड़ा सब ज्यादा भाजना
0: पड़े। नुकसान हुआ
1: देखो, नुकसान तब कतो हुए कतो नहीं, आज टाइम में वो अबार तो पंटा पड़े,
0: बाद में बताओ,
1: बाद में बताओ पड़े वो अबार तो ज्यादा नहीं इसका। देखो कोई चीज ना कान थोड़ी सी किए देखा ज्यादा हो जाए
0: तो अपन कुल मिलाकर के उनको आई है कि ज्यादातर अपन गोबर की खाद काम में लेनी चाहिए है कि नहीं। गायें की गोबर वाली खाद भी गायें के आप खेत भी बनो रहे हुए और सागे सागे आप जो फसल
1: भी बढ़िया हुआ,
0: बढ़िया हुआ और स्वादिष्ट हुआ,
1: स्वादिष्ट भी हुए। देखो एक ऑर्गेनिक हुए, टेस्ट भी अलग हुआ
0: है ना,
1: एक दो टेस्ट भी अलग।
0: ऑर्गेनिक खेती की तो बात निराली है,
1: निराली है सर।
0: बाकी मैं कि आप जो भी चीजें हो आप देसी तरीकों काम में ले, देसी तरीकों अगर आप काम में ले तो निश्चित रूप हूँ फायदा हुआ। ऑर्गेनिक खेती के अंदर कई कई चीजें यूज में ले,
1: ज्यादा अगर गोबर खाद भी ले,
0: गोबर खाद काम में लो, देसी बीज घर का काम में लो है ना, ऐसे चीजें। और खेती करो तो थोड़ी सावधानी भी रखो, है को नहीं। समय के ऊपर अगर भी पानी मिल जावे तो अपने फायदो क्यों, पानी की खेत ने पानी के अलावा और कई चीज।
1: देखो पानी अलावा ज्यादा तो मेहरमान आई चीज अगर कोई तरह बीमार नहीं हुए तो पानी अलावा ज्यादा कोई
0: आवश्यकता
1: को नहीं। गोबर खाद में जो बिजान करा भी पहले भी खेत में तैयार करके नाग दे तो ज्यादा दोए जरूरत कौन पड़ा।
0: ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल होने के भी फायदो अगर अपन आ मिल सके, आल खेत के आल दोल अपन लगा सका, पेड़ वगैरह भी।
1: बिल्कुल
0: पेड़ में कहीं है कि तरह तरह का पेड़ अगर अपन लगा दे एक तो मिट्टी का कटाव रुक के,
1: बिल्कुल,
0: और अपन हर चीज मिल जावे,
1: मिल जावे
0: है को नहीं। खेजड़ी का ज्ञान है, खेजड़ी सांगरी मिल रही हूँ, लूम मिल जावे,
1: मिल जावे
0: अपा के जानवर के खाने वास्ते अभी बढ़िया रहे हैं तो लोग खेजड़ी भी लगावा। भी अलावा जान अपा के खेत के चारों तरफ बाड़ बनावा अपा तो कोई कांटा की बनावा और कोई तार बंदी करे तो आपके कहीं है।
1: आपने देखो दो ही है सर,
0: दोनों ही है। पहली मिट्टी का ढेरा ऊंचा कर दो, मिट्टी खूब है
1: नहीं भी है, मिट्टी ज्यादा टाइम रुके भी कौन है,
0: उड़ जावा
1: उड़ जावा।
0: तो अपन के आल तोल कांटा की बाड़ करो,
1: कांटा की बाड़ या जाने तार बंदी
0: तार बंदी करना, कोई जानवर जी जानवर अंदर नहीं बढ़े। मिट्टी का कटाव भी रुके, भी
1: मिट्टी कटाव भी रुके, थोड़ी सी सेफ्टी भी है,
0: सेफ्टी रहे। सही बात है आपने, सेफ्टी होनी जरूरी है आज का टाइम के अंदर, सेफ्टी अपन के खेत की होनी जरूरी है क्योंकि बगैर सेफ्टी के अपन नुकसान हो जावे,
1: नुकसान भी हुए। एक दूसरी चीज जहाँ नील गाय है, हिरण है, सूर है, थोड़ा सा फसल ने बर्बाद कर,
0: बर्बाद यूं बचत रहे बाप,
1: यूं बचत रहे
0: क्योंकि जानवर अंदर घुस जावे तो भाई पत्तो ही कोनी कहीं कहीं नुकसान करे।
1: देखो खावे जके नु गमा हो जाता
0: है, गमा हो जाता है, खावे कम है गमा हो जाता
1: है।
0: ये बात ये ध्यान रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: है को नहीं, ध्यान आप जानवर है, जानवर में भी हरी बीमारी आवा टीकाकरण करो।
1: बिल्कुल सर,
0: समय समय पर टीका जरूर है कि नहीं, क्योंकि हर तरह की बीमारी का टीका है,
1: टीका
0: है। ध्यान आप बीज के अंदर टीका लगावा कि कोई भी बीमारी नहीं हो खेत के अंदर, ये भांति आप जानवर में भी
1: बीमारी आवे तो टीका
0: टीका लगे। अभी कहीं है कि निरोगा रहे,
1: निरोगा रहे
0: यानी पहला सुख निरोगी काया है।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल साहब, ओम जी। आज आप मांगे किसाना ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपका ट्यूबवेल भी है, खेत भी है, और क्या कराना कि ट्यूबवेल खेती करने वाला ने तो ज्यादा नॉलेज रहे हर तरीका का, तो आप मांगे किसाना ने जानकारी दी रेवास, आप घणो घणो धन्यवाद।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: तो किसान भाई, अब आप देखो, ओम प्रकाश जी, हाँ, जोड़ा का भी हूँ, बातचीत सुनिए जैसन खेती के बारे में जानकारी दी भी आपने, देसी तरीकों खेती करो और भी कहीं देसी तरीकों खेती करो और सही तरीकों अपना, अगर सही तरीकों खेती करना तो निश्चित रूप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिली। तो किसान भैया, खेती के अंदर अपन थोड़ा नवाचार भी करा तो बीमा भी कहीं अपने फ़ायदा मिला, नई नई टेक्नोलॉजी लेवा तो बीमा भी अपने फ़ायदा मिला। आप सोच रहे वाला मकबूल भैया बातें चीतें करा, कोई गीत भजन सुनाओ को नहीं, ओम प्रकाश जी माने कि मकबूल भाई कोई चोखो सो भजन या गीत सुने जो, तो ले सुनो ओ लोकगीत।

किसान भाई, समूह समर में अब आप और लोग ही सुनियो, उम्मीद रखा चोखा लगे वाला। और देखो आज बाजार के अंदर नया मूंग बिकया 8,100 रुपये लेर, 8,580 रुपया, और पुराना मूंग बिकया 6,000 लेर, 7,400 रुपया। मोठ की बात करा तो आज काला तिल बिकया पांगे 9,500 लेर 11,000, और सफेद तिल बिकया 10,000 लेर 11,500। जवारी बात करें तो 3,500 लेर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिकी। गवार बिकी 6,000 लेर 6,400 रुपये प्रति क्विंटल। तारामीरा बिकया 5,800 लेर 6,125 रुपये प्रति क्विंटल। जीरा बिकया 17,000 लेर 21,000 रुपये प्रति क्विंटल। दाना में तेरी बोली लगी 6,000 लेर 6,400 रुपये प्रति क्विंटल। इस गोल की बोली लगी 9,500 लेर 13,000 रुपये तक, और सौंप बिके 8,000 लेर 11,200 रुपया प्रति क्विंटल। चना री कम कम बोली लगी 5,400, उपरा उपरा 5,600 रुपया। असालिया बिकया 5,600 लेर 6,050 रुपया प्रति क्विंटल, और सिंधी सुवा बिकया आज मंडी में 6,000 लेर 7,900 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान भाई आ तो हा बाजार रो भाव, और अगर आपका ना जिनसा है और आप बेचना चाहो तो देख सको मंडी रो भाव आ है। अब देखो बाता चीता तो मैं और करना चाहूँ, लेकिन घड़ी इजा ज़्यादा देवक होनी, क्योंकि घड़ी को टाइम आपके आप टाइम बंद होना है, घड़ी का कुन थोड़े जो टाइम है आप को बहुरे पूरो। तो आप रहा मकबूल भाई ने दिलाओ सीख करा। राम राम।

किसान भाई अभी खेती बाड़ी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 बजे हैं। अब आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1365वां भाग सुनेंगी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश
1: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
1: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से। कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे
2: जी।
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए
2: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने AI से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें AI के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया, सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए
2: जी।
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की
2: जी।
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की
2: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
2: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
2: जी जी जी जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही
2: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाईं
2: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
2: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की
1: जी। श्रोताओं जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की
2: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
2: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स
2: जी।
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
2: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए
2: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
2: श्रोता, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
2: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
1: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी, समस्या थी गुणवत्ता की।
2: जी।
1: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
2: जी।
1: शुरुआत आसान नहीं थी, लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
2: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
2: जी।
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया, एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
2: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओं, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी? जी
1: जी हाँ बिमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े, उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई।
2: जी।
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा।
2: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
1: जी जरूर।
2: श्रोताओ, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
1: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए
2: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
1: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
2: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहां कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
2: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
1: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरधर गोपाल।
2: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
3: मेरे तो गिरधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त। उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया।

0: शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो? अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा? ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है, बिटिया शादी करने जा रहा है। अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
2: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
3: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी।
3: भाई बता दूंगा ना बेटी।
2: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
3: बेटी ये शिंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
2: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
3: सच्ची भाई?
2: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
0: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सर, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी।

0: आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी, दासी।
1: जी, जी, जी राणा जी महाराज।
0: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
1: जी महाराज।
0: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
1: रानी सा की जय हो।
2: आओ सखी, भीतर आओ।
1: जी, वो
2: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग रही हो।
1: वो कुछ नहीं।
2: कहो ना सखी, क्या बात है?
1: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
3: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
1: पर हमें तनिक शंका होती है।
3: दो दो हमें, हम अभी पिएंगे।
1: रुकिए रानी सा, रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विश्वत हो?
2: राणा भेजा विश का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर होनी हो।

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और काई, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या?
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही हैं, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
6: ऐसे पैदल कहाँ जा रही हैं रानी सा?
10: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
11: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर?
10: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा?
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
10: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहाँ रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं।
5: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई, जगत देख रोई, संत सदा शीश राखूं, राम हृदय होई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती है।

0: मीरा अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मिड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती।

0: हीराबाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
1: इतनी मधुर आवाज।
2: हाँ।
3: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
2: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
0: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
3: तो क्या हमारी मीराबाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
0: हाँ भैया, बहुत सोना हो जाएगा
2: यार।
6: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गई और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गई।
7: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी, सुगढ़ और सपा

0: कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम की होती हूँ उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
8: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
2: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
7: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
9: हाँ, ये बात तो ठीक है,
7: हो गई दुगनी।
5: अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
2: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
7: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
2: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो
2: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
5: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
3: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
9: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
2: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
10: 300 किलोग्राम?
7: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
9: और चींटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
3: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
2: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम सोचो डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
3: हाँ, कहीं 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का अभी आप 1365वां भाग सुन रहे थे। यह आकाशवाणी नागौर है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी कव्वालियाँ। कार्यक्रम की पहली कव्वाली सुनिए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में।

अभी आप मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में धर्मकांटा फिल्म से ये कव्वाली सुन रहे थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली कव्वाली मन्ना डे के स्वर में, जंजीर फिल्म से।

कार्यक्रम के अंत में निकाह फिल्म से सुनिए महेंद्र कपूर, आशा भोसले, सलमा और साथियों के स्वर में ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे चंद कव्वालियां। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए जमाने के। कार्यक्रम की पहली पेशकश सुखविंदर सिंह, इस्माइल दरबार और साथियों के स्वर में कृष्णा फिल्म से ये गीत।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में हम साथ साथ हैं फिल्म का। गीत लिखा है आर किरण ने और धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

अभी आप कार्यक्रम गाने नए जमाने के फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज

0: रंग रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहाँ कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, Possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी

0: स्थान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
6: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7 करोड़ 67 लाख रुपए

0: मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
1: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और छप्पन भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसू क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। फनकार है हरिहरन।

अभी आप सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में हरिहरन की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, रात्रि के 9 बजने को हैं। अब आप विविध भारती मुंबई से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का, फिल्म का नाम है सागर।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, तर्ज है राहुल देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जहरीला इंसान।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

आज एक ऐसा कलाकार जिसने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना लैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का ये गीत आपको सुनवाएं।

शाहरुख खान रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए

आदेश का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। आदेश ने शुरुआत में आरडी बर्मन, राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया, फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में आपने अमिट छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीतबद्ध ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में ये गाना।

एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में आपने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का है ये गाना।

आदेश श्रीवास्तव का विवाह जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की अभिनेत्री बहन विजेता पंडित से हुआ। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, पर यह फिल्म और इसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि कन्यादान फिल्म के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। इसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा उनको होना था, जैसी उम्मीद आदेश को थी। लेकिन आदेश ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की उसकी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।

सन 1994 की बात है, फिल्म आई आओ प्यार करें। आदेश श्रीवास्तव अपने श्रोता दर्शकों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ

सलमा पे दिल आ गया। ये फिल्म और शस्त्र के गीत ने दर्शकों को आकर्षित तो किया, लेकिन शस्त्र के इस गीत ने विशेष ध्यान खींचा। क्या अदा, क्या जलवे तेरे पारू।

आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने गाए, जैसे सोना सोना, शावा शावा, गुस्ताखियां, फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा आदेश का संगीत, जिसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज में।

0: जैसा कि हम जानते हैं, एक गायक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था और 1991 की फिल्म प्रहार में आपने एक रोल अदा किया था, छोटा सा वायलिन वादक बने थे आप। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी आपने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, पर कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना।
1: अजी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1

आदेश श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें आपने म्यूजिक स्कोर किया था वेलकम बैक, जो इनके जन्मदिन 4 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। और 5 सितंबर को कैंसर ने आदेश श्रीवास्तव को संगीत प्रेमियों से यकायक छीन लिया। ये क्षति अपूर्णीय है, लेकिन उनका संगीत और उनकी शख्सियत श्रोता, दर्शकों और करीबियों के बीच एक याद बनकर हमेशा रहेगी।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला और गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा भी यहीं संपन्न होती है। कल दिन में 8:55 पर हमारी पहली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।